चंदा चले तारा चले, चले ये पवन का झोंका। चंदा चले तारा चले, चले ये पवन का झोंका। बहती हवा का हर एक झोंका देता यही संदेशा। मन्ना डे की आवाज में आइए सुनते हैं सफर फिल्म से ये गीत।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में फिल्म धूल का फूल से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, मुस्कुराना भी एक ब्लेसिंग है उस प्रभु की ओर से जो हर किसी के पास नहीं है। और आपने देखा होगा कि किसी के पास बहुत कुछ है, पैसा भी है, जमीन भी है, सब कुछ है, पर चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। और मुस्कुराहट जो है बहुत ही जरूरी है, ये सबसे बड़ा गहना है। दोस्तों, आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नजराना प्यार का से ये गीत।

दोस्तों हंसते मुस्कुराते रहिए और अब भोर सुहानी से मुझे यानी अपनी दोस्त अर्चना को दीजिए इजाज़त और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता

0: समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगे और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगे। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रूपये और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitinder Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
2: The earlier bill and the amendment are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: After the passage of the bill, the lower house was adjourned till 11 a.m. today. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man. These offences are punishable with imprisonment of up to 3 years or fine or both.

0: The Commonwealth Games.
1: नमस्कार, हम आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का स्वागत करना चाहते हैं ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सातवें दिन के अपडेट्स के साथ। 10 खेलों वाले छोटे फॉर्मेट में उतरते हुए 122 सदस्यों वाली भारतीय टीम के सामने एक अनोखी और मुश्किल चुनौती है। ग्लासगो ने कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग और टेबल टेनिस जैसे पारंपरिक खेलों को हटा दिया, जिनमें भारत का दबदबा रहा है। और बर्मिंगहम 2022 में भारत को मिले कुल पदकों में से लगभग आधे पदक इन्हीं खेलों में आए थे। फिर भी इस साल भारत का नजरिया निडर और नए जोश वाला है। खेलों की बदली हुई सूची से निराश होने के बजाय भारतीय खिलाड़ी इन गेम्स को अपनी काबिलियत साबित करने के एक बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। पैरा एथलेटिक्स में शानदार डबल पोडियम फिनिश से लेकर ट्रैक पर लंबी दूरी की दौड़ में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल तक टीम इंडिया दुनिया को एक जबरदस्त संदेश दे रही है।
2: भारोत्तोलन में दो दिन पहले तक हर दिन पदक आ रहे थे। भारतीय झोली भरने के काम का वजन भी उन्होंने उठा रखा था। हालांकि पिछले बर्मिंगहम खेलों के 3 स्वर्ण सहित 10 पदकों की बराबरी तो इस बार नहीं हो पाएगी, लेकिन अब पदकों की जिम्मेदारी मुक्केबाजों ने उठा ली है। एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। एथलेटिक्स में ट्रैक और फील्ड दोनों में ही अब भारतीय मजबूत दावेदारी ठोकने में सक्षम दिख रहे हैं, तो तैराकी और बोल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की कोशिशें जारी हैं। और पैरा खिलाड़ियों के जज्बे को तो सलाम है हमेशा ही। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 का सातवां दिन और सारे विवरण के साथ उपस्थित हैं हम। भारत के बेस्ट लॉन्ग जंपर शिशंकर मुरली की कहानी साहस, संकल्प और इच्छा शक्ति की एक मिसाल है। 1.5 साल पहले जिसका करियर खत्म होने के कगार पे था, वो 74 देशों के खेल मेले में अपनी स्पर्धा में भारत के लिए अपना लगातार दूसरा रजत पदक ले आया 8.09 मीटर की कूद के साथ। अपने दूसरे प्रयास में ही उन्होंने ये दूरी नापी। इसके बाद के 2 प्रयास फाउल हो गए और अंतिम प्रयास में स्वर्ण पदक पाने के लिए उन्हें कम से कम 8.15 मीटर की दूरी पार करनी थी, लेकिन उसे वो नहीं कर सके। अपनी दौड़ से पहले अपने खास अंदाज में खुद में जोश भरने के लिए उन्होंने समर्थकों को इशारा किया ताली बजाने का और कूद की शुरुआत की। केरल के शिशंकर के पिता एस मुरली राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे हैं और उनके कोच हैं। उनकी हर चीज का वो पूरे समर्पण के साथ ध्यान रखते हैं।
3: Actually, always I am the coach and father. We talk about sports only. Whenever we meet, always we plan meet.
2: हरियाणा में जन्मी मनप्रीत कौर का खेल जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 5 साल तक प्रतिबंध झेलने के बाद वो सम्मान वापस कमाने के लिए कृत संकल्प होकर फील्ड में आई और बहुत कुछ हासिल कर लिया। ग्लासगो में भी देश के लिए मेडल पाने के बिल्कुल करीब तक पहुंच गई। 5वें प्रयास में 17.49 मीटर फेंका, लेकिन 4th स्थान पर रह गईं। पुरुषों के शॉट पट में

0: जिंदर सिंह तूर का कहना ही क्या। दो बार के एशियाई चैंपियन तूर ने आसानी के साथ 20 मीटर का ऑटोमेटिक क्वालिफाइंग मार्क पार कर लिया। देश में एथलेटिक्स के बढ़ते स्वरूप पर उनका कहना था,
1: नीरज ने टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था, तब से हमारे जो इंडियन एथलीट्स हैं अभी सब अपने अपने इवेंट में बेस्ट कर मतलब कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट करें वर्ल्ड लेवल पर, मुझे लगता है आने वाले सालों में अच्छा करेंगे।
0: तो उनके साथी समरदीप सिंह गिल तूर पाजी की छाया से निकलकर अपना स्थान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 19.95 मीटर के साथ वे भी क्वालिफाई कर गए। अनिमेश कुजूर 200 मीटर में कुल मिलाकर सातवें स्थान पर रहे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, तो 400 मीटर हर्डल्स में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी भी सातवें और आठवें बेस्ट टाइम निकालकर क्वालिफाई करने में सफल रहे। पारुल चौधरी ने पिछले एशियाई खेलों में 2 दिन में 2 पदक जीते थे, 3000 मीटर स्टीपल चेस और 5000 मीटर में। 3000 मीटर स्टीपल चेस में वही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद थी, लेकिन ये दिन उनका नहीं था। वो पांचवें स्थान पर रहीं 9:26.75 के साथ।
2: The stunning 1-2 finish marked a watershed moment in Indian para-athletics history, etching Dilip Mahadu Gavit and Mohammad Basil into the record books as they swept the podium on the grand Commonwealth Games stage. Dilip's historic gold was secured with a blistering Games record time of 10.71 seconds, a milestone achieved by exploding off the blocks and maintaining a relentless lead to rewrite the competition's record books. By turning the sprint track into a showcase of absolute dominance, capped by that new standard, the duo not only elevated India's standing in international short distance para sports but also delivered a powerful statement of intent for the nation's rising sprinting pedigree on the global map. Dilip Mahadu Gavit and Mohammad Basil delivered a breathtaking 1-2 finish for India in the T47 100 meter finals at the Commonwealth Games, with Gavit surging over the final 30 meters to secure the gold medal in a Games record time of 10.71 seconds, while Basil stormed home in 10.83 seconds to claim a brilliant silver ahead of England's Kevin Santos. Dilip Mahadu Gavit, a name who has etched himself in the record books of history. In men's discus throw F42-44, F61-64, Devendra Kumar and Sagar Thayath represented India in para-athletics finals. Sagar Thayath finished in 6th position with a top effort of 46.35 meters, while Devendra Kumar was placed close behind, recording a throw of 48.20 meters.
0: भारतीय बॉक्सिंग के लिए ग्लासगो 2026 का सातवां दिन एक कभी न भूलने वाली उपलब्धि लेकर आया। 6 मुक्केबाज विभिन्न भार वर्गों में रिंग में उतरे और सभी 6ों ने जीत हासिल करके पदक पक्के कर लिए। यकीनन एक अविस्मरणीय दिन जो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। शुरुआत की भिवानी की मुक्केबाजी फैक्ट्री की एक और पौध साक्षी चौधरी ने 51 किलोग्राम वर्ग में। साक्षी ने नॉर्दर्न आयरलैंड की काइटलिन फ्रेयर्स को ये एहसास करा दिया कि क्यों उन्हें जायंट किलर कहा जाता है। एक तरफा बाउट रही 5-0 से साक्षी सेमीफाइनल में। दूसरी बाउट में थी राजस्थान से आने वाली पहली इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी। न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन से कांटे की फाइट हुई। दूसरे राउंड में अरुंधति ने बढ़िया प्रहार किए और विपक्षी ने एक पेनल्टी भी खाई। निर्णय एकमत नहीं रहा और 3-1 से अरुंधति के पक्ष में गया।
3: बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली मैं मेरी जीत को मेरे छोटे भाई को डेडिकेट करना चाहूंगी। और आज आसान तो नहीं था बट अच्छा रिजल्ट आया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आए तो इसीलिए है कि गोल्ड लेना है, ये तो बस एक सीढ़ी थी।
0: और अब बारी थी लड़कों की। भिवानी के ही सचिन सिवाच के सामने बोत्सवाना के ट्रेजर मॉर्गी थे। वो कोई प्रतिरोध खड़ा नहीं कर सके। तीनों राउंड में सचिन के मुक्के ही मुक्के लगातार दिखते रहे रिंग में और 5-0 से एक और निर्णय भारत के पक्ष में। तो अब उत्साहित अंकुश पर भला कौन अंकुश लगाता। सेशल्स के जेड मिकॉक तो पूरी कोशिश करके भी नहीं लगा सके। अंकुश के मुक्कों के आगे बेबस हो गए और सर्वसम्मति से एक और जीत 5-0 के साथ। नब्बे किलो में नरेंद्र बेरवाल भी हरियाणा से ही हैं और उन्होंने हैवीवेट वर्ग में भी भारतीय परचम फहरा दिया। समोआ के माइकल सेको की कड़ी चुनौती थी उनके सामने, लेकिन आखिरकार वो इसको पार करने में सफल रहे और 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से जीत गए।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंगड़ी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न-ए-हैदराबाद इज योर आफ्टरनून।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to Namaste Hello Adab on your favorite station FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. So guys, look at the calendar. Today is practically the last leg of July. मतलब महीने का आखिरी दिन बस सर पर है और जेबों का हाल तो आपको पता ही नहीं. Bank balances are whispering their final goodbyes. Wallets are completely empty and we are surviving purely on hopes, dreams and that one stray 10 rupee coin as I said before. जुलाई ने तो आते आते हमारी पूरी किस्मत नहीं छोड़ ली. लेकिन रुकिए, उदासी को कचरे के डब्बे में डालिए, बिकॉज टुमारो इज अ ब्रांड न्यू डॉन. ऑगस्ट इज स्टेपिंग इन एंड ट्रस्ट मी, ऑगस्ट इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर. आई एम मैनिफेस्टिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस. एंड नया महीना, नई उम्मीद और ढेर सारी नई वजह स्माइल करने की. वेदर इट्स क्लियरिंग आउट ओल्ड स्ट्रेस, प्लानिंग आउट सम फ्रेश गोल्स और जस्ट वेटिंग फॉर दोज गॉर्जियस ऑगस्ट शावर्स टू हिट हैदराबाद दिस मंथ इज गोइंग टू ब्रिंग अ होल न्यू वाइब. Let's trust that. तो बस अब पुराने दुख दर्द यही छोड़िए और स्टे ट्यून टू एफ एम रेनबो 101.9

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. So, looking around at our busy lives, juggling work, endless scrolling and traffic, how often do we actually pause and think about the people who make all of this chaos completely worth it? Yes, I am talking about those amazing souls who know all our deepest secrets, survived our worst headaches and still choose to stick around. आर फ्रेंड्स, क्योंकि यार दोस्ती के बिना ये जिंदगी ना एकदम फीकी सी लगती है. विथ फ्रेंडशिप डे अराउंड द कॉर्नर, वी आर किकिंग ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल काउंटडाउन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, एंड टुडे इज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे एज वेल. From the school time binge partners who shared our lunch boxes to those late night group chat therapists who talk us out of our 2 AM overthinking, we are going to talk about it all over in the next few days. तो बस अपने सभी यारों को जल्दी से कॉल या मैसेज करके बोलो कि रेडियो ऑन कर ले, बिकॉज कमिंग अप नेक्स्ट वी आर अनरैवलिंग द फर्स्ट बिगेस्ट सीक्रेट अबाउट व्हाई सम फ्रेंडशिप्स लास्ट अ लाइफ टाइम व्हाइल अदर्स फेड अवे एंड ऑरिजिन ऑफ दिस डे. एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट गोइंग टू वॉन्ट टू मिस दिस ट्विस्ट कमिंग योर वे इन जस्ट अ बिट. सो स्टे ट्यून टू FM Rainbow 101.9, लिसन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग.

0: Our industry, yes. People thought it was just a smart marketing trick. But to sell more cards during a slow summer month, तो क्या ये सिर्फ एक बिजनेस ट्रिक थी या कि इसके पीछे कोई और सच्चाई भी है? आई टेल यू, इन 1958, सो इन 1958, डाउन इन स्मॉल टाउन इन परागे, अ जेंटलमैन नेम्ड डॉक्टर रैमन आर्ट्रिमो ब्राशो वॉज हैविंग डिनर विथ हिज फ्रेंड्स, एंड ही थॉट, यार दुनिया में इतनी नफरत है, क्यों ना एक ऐसा दिन हो जो सिर्फ दोस्ती और पीस को सेलिब्रेट करे, एंड बूम, द वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे क्रूसेड वॉज बॉर्न, विच एवेंचुअली लेड द यूनाइटेड नेशंस टू ऑफिशियली डिक्लेयर इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे. मतलब ग्रीटिंग कार्ड्स के एक छोटी सी आइडिया से लेकर यूएन तक का ये सफ़र है ना एकदम फिल्मी. तो बस अपने बेस्टीज को याद करिए एंड विश देम एंड स्टे ट्यून टू एफएम रेनबो 101.9.
1: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పీజీ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నాయి. చివరి తేదీ ఆగస్టు 7. వివరాలను సమీపంలోని స్టడీ సెంటర్లో లేదా హెల్ప్ డెస్క్ 0402368033 లేదా 2368055 లో లేదా www.brao.ac.in లో పొందవచ్చు.

0: FM Rainbow 101.9.
1: And just like that, you're back to your favorite station, FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. So guys, talking about legendary friendships, but today, let's flip the pages of Indian history. क्या आपने कभी सोचा है कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी एम्पायर्स सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि एक ऐसी दोस्ती और पार्टनरशिप से बनी है जो आज भी मिसाल है. थिंक अबाउट चाणक्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य. वन वॉज अ मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट विद अ ब्रिलियंट माइंड एंड द अदर हैड अ फियरलेस ग्रिट टू टेक ऑन एन एंटायर एम्पायर. टुगेदर दे डिड नॉट जस्ट ओवर थ्रू अ डायनास्टी, दे लिटरली रीड्यू द मैप ऑफ एंशियंट इंडिया. ये सिर्फ एक गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था, एक ऐसी अल्टीमेट पार्टनरशिप थी जहाँ एक ने सपना देखा और दूसरे ने उसे सच कर दिखाया. सबक ये मिलता है कि व्हेन यू कंबाइन अ विजनरी स्ट्रैटेजी विद अ डूअर्स फियरलेस एग्जीक्यूशन, यू डू नॉट जस्ट सक्सीड, यू मेक हिस्ट्री. तो ऐसे ही एक और इतिहास के पन्नों से जुड़ी कहानी आगे आ रही है. सो स्टे ट्यून टू FM रेनबो 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. So what's up? माइथोलॉजी का एक और ऐसा किसी किस्सा जो दोस्ती की परिभाषा ही बदल देता है. लेट्स टॉक अबाउट कर्ण एंड दुर्योधना. इन ए वर्ल्ड दैट कॉन्स्टेंटली जज्ड कर्ण फॉर हिज बैकग्राउंड एंड मॉक्ड हिम, दुर्योधना वॉज द वन हु ऑफर्ड हिम रेस्पेक्ट, अ थ्रोन एंड अनकंडीशनल फ्रेंडशिप. एंड इन रिटर्न Karna stood by him like a rock, remaining fiercely loyal till his final breath. Even when he knew he was fighting the losing war, मतलब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके बुरे वक्त में आपके हाथ नहीं छोड़ता. इससे हमें क्या सीखने का मिलता है? The takeaway is here is the sheer power of loyalty and standing up for the person who believed in you when nobody else did. Teaching us that loyalty is the rarest currency in human relationships. तो बस अपने यारों को एक टाइट हग दीजिए और उन्हें बताएं कि आपके लिए उनका क्या मतलब है. Because coming up next, we have some fantastic tracks lined up just for you and your besties. Stay tuned to here on FM Rainbow 101.9.

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।

0: 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. So

0: FM Rainbow 101.9.
1: You're listening to Akashwani FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. Yes, so let's talk about the massive contrast between school friendships and adult life. याद है वो दिन जब स्कूल में सिर्फ एक टिफिन बॉक्स शेयर करने से या एक बेंच ही पर बैठने से लाइफ लॉन्ग दोस्ती हो जाती थी. नो बैकग्राउंड चेक नीडेड, जस्ट प्योर वाइब्स. बट फास्ट फॉरवर्ड टू एडल्टिंग एज वर्किंग प्रोफेशनल्स, रे बाप रे, ट्राइंग टू प्लान अ सिंपल कॉफी डेट विथ योर फ्रेंड नाउ फील्स लाइक स्केड्यूलिंग ए हाई लेवल कॉर्पोरेट मीटिंग. यू ओपन योर कैलेंडर्स, चेक योर टाइम लाइन्स एंड रियलाइज द अर्लीस्ट यू कैन बोथ मीट इज 3 weeks फ्रॉम ट्यूजडे. मतलब स्केड्यूल मैच करते करते उम्र निकल जाती है. इसे सीख ये मिलता है कि द लेसन इज दैट वेल मेकिंग टाइम गेट्स हार्डर एज वी ग्रो अप, द फ्रेंड्स हु स्टिल मैनेज टू शो अप फॉर यू थ्रू ऑल द क्यूज आर द वंस वर्थ कीपिंग फॉर अ लाइफ टाइम. तो आप अपने किसी बिजी दोस्त को लास्ट टाइम कॉफी के लिए बुलाने की कोशिश की थी? थिंक अबाउट इट एंड स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9.

0: लाउड
1: ये जाती महंगे क्लब में जहां होता डंका
0: क्राउड
1: लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट

0: FM Rainbow 101.9.
1: You're tuning into Akashvani FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. Let's talk about that one absolute constant in your lives who is currently miles and miles away. वो दोस्त जो शायद किसी दूसरे शहर में है या फिर किसी दूसरे टाइम जोन में बैठकर अपनी रात को हमारी सुबह बना रहा है. आई नो हाउ मच यू मिस देम. मैं जानती हूँ रोज़ सुबह वो गुड मॉर्निंग टेक्स्ट देखना और सोचना कि काश वो यहाँ पास होते थे कितना अलग होता है ना. दैट कॉन्स्टेंट स्क्रीन लैग ऑन वीडियो कॉल्स, मिसिंग आउट ऑन दो स्पॉन्टेनियस मिडनाइट चाय प्लान्स एंड just that sudden urge to give them a real tight hug when life gets too overwhelming. Distance chahe kitni bhi ho, par dil ka connection to wahi rehta hai na. So today, on behalf of all of you who are staring at your phone screens and wishing your bestie was right here next to you, main ek chota sa message un sabhi long distance besties ko bhejna chahti hu. To bas bina ek bhi second waste kiye abhi apne us door baithe us dost ko व्हाट्सएप या कॉल करके बोलो कि अपना सब कुछ छोड़कर जल्दी से फिल्म रेनबो लगे. बिकॉज कमिंग अप नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्पीक स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट टू देयर्स, टेलिंग देम एवरीथिंग यू हैव बीन वांटिंग टू सी एंड स्टे राइट हियर एंड डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. Let's talk about life. जिंदगी को जीने के लिए कोई मैनुअल तो आता ही नहीं, बट ओवर टाइम स्मार्ट पीपल हैव फिगर्ड आउट सम क्लियरली इनसेनली प्रैक्टिकल रूल्स दैट मेक हैंडलिंग द डेली कियोस सो मच ईजियर. सो टुडे लेट्स डाइव डीप इनटू फ्यू फैसिनेटिंग रूल्स एंड सी हाउ दे वर्क, फाइंड आउट हाउ दे केम इनटू एक्जिस्टेंस एंड सी हाउ दे कैन कंप्लीटली चेंज योर गेम. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी स्टार्ट

0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई,
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड.
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट.
1: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
0: It's not just food.
1: It's culture, history and flavor rolled into one.
0: Jashne Hyderabad.

Shampoo, let's go.

0: नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की गाथा, उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमेशा ही परचम लहराया है। जितने भी ऑपरेशंस में इन्होंने अपना दम खम दिखाया, वहां ये साबित कर दिया कि अपनी दक्षता से, कुशलता से किसी भी परेशानी को, किसी भी जटिल समस्या को उससे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशंस, इनके बारे में जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इन्होंने अपना साहस दिखाया, जिनमें इन्होंने अपना नेतृत्व किया, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए, उसका जिक्र हम आज करेंगे यहाँ इसी शो पर जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें 21वां राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 इससे भी सम्मानित किया। और ये पहले ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्हें TIIFATFA 2018 मुंबई अवार्ड्स यहाँ भी सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कहते हैं कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति जो है अपने साथ असंख्य यादें, असंख्य बातें, असंख्य किस्से, कहानियां लेकर आती हैं। तो आज हम कर्नल शैलेंद्र सिंह से उन सभी किस्सों, कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने हमेशा वीरों के जरिए, अपने सैनिकों के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए बड़े बड़े जंग लड़े हैं और हमेशा हर मैदान में, हर जंग मैदान में फतेह हासिल की है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और मैं आज आपके थ्रू सभी को करेक्ट कर दूं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता
0: जी।
1: मेरा फौजी कभी रिटायर हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात अथॉरिटी के तौर पर, मेरे फौजी से जितना ज्यादा काम कराओगे वो उतना ज्यादा खुश होगा। जिस दिन उससे आप काम नहीं कराओगे उस दिन वो रिटायर हो जाता है। मैं ये जरूर मानता हूं और इस बात में मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे सारे फौजी भाई कि जिस कैपेसिटी में जहां पर भी हैं, आप पाएंगे गांव के लेवल पर, सिटीज के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। और मैं यही कह सकता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज्यादा वो कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं, वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है और जो सेवाएं हैं वो आप में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहाँ से ये कारवां शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहाँ आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
1: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है कि लाइक हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ,

0: लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी, क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं, तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो दो अट्रैक्शन हैं जो मुझे एकेडमी सॉरी SSB में भी पूछा गया था कि फौज आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो,
1: जी
0: तो मेरा पहला आंसर था कि ऐसा समझ समझा जाता है कि फौजियों को सुंदर बीबियां मिलती हैं।
1: अब निश्चित ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्पाउस हैं, जो बेटर हाफ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और आपकी मुस्कुराहट से उस बात को महसूस कर सकती हूँ मैं।
0: मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, मेरी नजरों से देखोगे तो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। और जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात की जाती है, जब आपसे बात की जाती है, तो वो यही कहते हैं कि हमारे घर को जिसने संजो कर रखा है, जिस खूबसूरती से संजो कर रखा है, हमारे पीछे भी जब हम मिशंस पे जाते हैं, वॉर्स पे जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शी इज द वन, वही एक है जिसकी वजह से घर चहकता है।
0: नहीं देखिए, ये जो आपने बोला है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने बेटे से जब पहली बार मिला, तो जब मैंने बेल बजाई और वो जो जाली वाला था उसमें से मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा लुढ़कता पुढ़कता आ गया, और उसने फिर मुड़ा और अपने मम्मी की तरफ आवाज निकाल के कहता है, माँ कोई अंकल आए हैं। आप सोचिए कि वो दैट लेडी जो इतने टाइम तक अपने बच्चे को अपने घर को संभालती रही, मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता सकता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट है। इट इज लिटिल मोर देन बहुत डिफिकल्ट, इतना ज्यादा मुश्किल का मामला है। ये एक अलग बात है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको लग्जरीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही है आपके पास, जो सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, बट उसके बावजूद आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हो कि मेरा हस्बैंड कल आ रहा है, देयर इज अ सेलिब्रेशन। अगर दिवाली पर नहीं आया तो जिस दिन आया उस दिन दिवाली जरूर हो जाती है।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी आर्मी वाइफ, आर्मी मेन की वाइफ इस वक्त हमें सुन रही है ना, इट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम। कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, और खास तौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर हैं और घर से दूर हैं, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुँच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती और घर वैसे का वैसा ही चलता है। जैसा कि आपने बताया कि जब घर पहुँचा तो बेटे ने जिस तरह से आपको देखा, तो इसके भी बहुत सारे पहलू है, लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ। आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो आपके पापा, आपके फादर खुद एक एक्स सर्विसमैन है, तो आर्मी मैन है, तो आप के लिए ये आपने बहुत देखा होगा कि इस शहर, उस शहर, उस राज्य बहुत ज्यादा ऐसे इधर से उधर ट्रैवल करते होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त भी बनते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी चेंज होते होंगे, उसकी कुछ यादें बातें साथ हैं।
0: मुझे लगता है कि फौजीज के बीच में ना एक बड़ा फेमस है बात कि फौजियों की दोस्ती रेलवे स्टेशन तक ही होती है। हर रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजी दोस्त पीछे छूट जाते हैं, जब आप अगले रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ नए फौजी आपके दोस्त बन जाते हैं। बढ़िया बात यह है कि पिछले वाले चलते रहते हैं, अगले वाले जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी के साथ एक बार सर्व कर लें और अगर कल वो आर्मी चीफ भी बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहां था, अरे तू वहां था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहां थे, तुम कहां थे, दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि फौज के लिए एक अचीवमेंट हो सकती है कि वी आर एग्जेम्पलरी इन दिस, कि जो भी है सबसे बड़ी बात यह है हम हमेशा दोस्त हैं।
1: वाह, क्या बात है, हमेशा दोस्त हैं। तो केवी स्कूल से आप पढ़े हैं, और केवी स्कूल की जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ के बच्चे हों, वहाँ की टीचर्स हों, तो असंख्य यादें आपके साथ होंगी, और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ यहाँ पर। ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल खत्म होते होते कि जाना है तो आर्म फोर्सेज ही जाना है, ऐसा कुछ था मन में?
0: नहीं, मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे खराब बात एक ही थी कि मेरे टीचर्स सोचते थे

कि कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। दिस इज नॉट डन एज फार एज मैं, जहां तक मेरे लिए बात है भाई, आप मैं मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिन ही हूं, बिल्कुल सीधा हूं, जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा हो जाऊं, जहां आपने लाइन में खड़ा कर दिया वहां पर खड़ा हो जाऊं, शोर नहीं करूं। अब वेल मुझे मुझे

0: मुझे मुझे मैं इसमें काफी हद तक, अगर आज भी मेरे स्कूल वाले केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर वाले बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि सर आपसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं था।
1: वाह क्या बात है, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं जिसकी वजह से वो रिकग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं।
0: मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना दे वर वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया लोग थे। पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था,
1: अच्छा
0: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा
1: वाह क्या बात है,
0: है।
1: क्या बात
0: मतलब
1: है।
0: आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं,
1: हाँ
0: क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गईं।
1: वाह क्या बात है, शैतानियां कम हो गई। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं ना जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले करती
0: बिल्कुल
1: हूँ।
0: बिल्कुल
1: और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है। हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, जब भी वो दोस्त मिलते हैं तो खुशी में हमेशा इजाफा ही होता है।

0: वैसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसी कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है, जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं। कर्नल साहब, मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था क्या? घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, ये कहानी जरूर सुनाए।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा,
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट मुझे लगता था इस सबसे हटके खाना चाहिए कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको पोंगा बनाकर खाते हुए घूमते जाएं। बट ये अलाउड नहीं था। सो ये मैं ज़रूर मानूंगा। बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर घरों में क्योंकि यही था, तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी टोक देते थे, क्योंकि मे बी देवर मोर डिसिप्लिन। बट पर्सनली अगर मुझे लगता है, अगर मैं अपना याद करूं, तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करे, बट मुझे डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को रुकावट के तौर पर देखता था। एंड आई वॉन्टेड टू फ्लाई फ्री, कि उल्टे सीधे सारे काम क्यों ना करूं। ये एक अच्छी बात हुई कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं पाया, जो मुझे लगता है आज भी कि दारू पीने की बात कर लो या सिगरेट की बात कर लो, तो वो इतना बड़ा टैबू था कि नहीं। और उसमें मेरे फादर का कंट्रीब्यूशन है कि यस, वो खुद भी नहीं पीते थे, तो वो भी एक बड़ा वो था। वो खुद भी जिम्मेदारी से चलते थे, वो वॉक करते थे, वो पीटी करते थे, तो देख के अच्छा तो लगता था। हम उसी से स्पोर्ट्स में आ गए। और जहाँ तक बात आती है फौज ज्वाइन करने की, तो वेल कैंटोनमेंट्स में, स्कूल्स में ये एक माहौल बनता है कि आप 12वीं के करीब एनडीए का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, अगर आप कॉलेज वाले हैं तो सीडीएस का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। अब मेरे जैसे जो चाहे नहीं भी चाहते थे, क्योंकि 6-7 दे रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए ईगो हैसल के चलो मैं भी दे लेता हूँ, तो हम 7 बच्चों ने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, और मानिए मेरी बात, 7 का क्लियर हो गया, 7 क्लियर हो गए। लेकिन एक 8वां बच्चा था, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने नहीं दिया था। उसने कह दिया कि आईआईटी होता है जो भी एग्ज़ाम असली, ये तो सब बेकार है। 7 के 7 एसएसबी एग्ज़ाम देने नहीं गए।
0: अच्छा,
1: सो 8 के 8 ने आईआईटी का एग्ज़ाम पर जोर लगाया, और 8 के 8 में से सिर्फ वो एक आईआईटी निकल गया। हम 7

0: रुक के रह गए, मतलब आप सोचिए कि दूसरे के ऊपर जाने। और फाइनली ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं सात में से हम चार वापस आर्मी के अंदर आ गए।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि कुछ नियतियां तय किया होता है और कुछ आपकी इंस्टिंक्ट्स ने, यानी कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उस रास्ते पर जरूर चलते हैं। तो एनडीए के थ्रू तो एंट्री नहीं हुई आर्म फोर्सेस में, फिर कौन सा रास्ता था जिसकी वजह से आप पहुंचे?
0: वो हम ग्रेजुएशन, आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, वो अपना शिमला में था, मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर माहौल में हमारे पास तीन चार चार हम इकट्ठे थे। एक होता था एनसीसी वाला, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। एक होता और होते थे, वो होते थे अपना एक बॉर्डर रोड्स के, और एक और लड़का था, तो हम चार थे। तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी, क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं, तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए, तो वहाँ हमारा इंट्रैक्शन उससे बढ़ा। और देखा कि फाइनली वो एग्ज़ाम दे रहा है, जब वो एग्ज़ाम दे रहा था, हमने कहा चलो भाई हम भी एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और। सो मुझे लगा कि इस एग्जाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था, तो मैंने ये एग्जाम दे दिया। और एग्जाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्जाम दिया, उस दिन शाम को मैंने कॉरपोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया, और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई, और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका सीडीएस एग्जाम क्लियर हो गया है,
1: वाह,
0: तो वहां से कॉल अप लेटर आ गया एसएसबी का। तो हमने उस जॉब के अंदर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए कि भाई जाकर देख कर आते हैं बेंगलोर में क्या हो रहा है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, वहां गए, वहां पर देखा कि वो पहले दिन, अदरवाइज काफी को पहले दिन वापस कर दिया जाता है, तो पहले दिन हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन हो गया। अच्छा, अगले 3 दिन उन्होंने और कराया, और ग्रुप टास्क, ये टास्क, वो स्टाफ,
1: सब
0: तो
1: जीटीओज आपके हुए
0: हाँ
1: होंगे।
0: जीटीओज वाला जो काम था वो भी आ गया, तो वहां फिर लाइनअप लगी, तो वहां पर 3 लड़कों को बोला गया कि तुम आगे और बाकी पीछे, और पीछे वालों को बोला गया पीछे मुड़ तेज चल, आप बाहर जाइए, आगे 3 वाले। तो वहां पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ,
1: अच्छा,
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली।
1: वाह, क्या
0: सो
1: बात
0: आई
1: है।
0: हैड टू एक्सटेंड माई लीव के भाई चलिए अभी 3 दिन और मेडिकल होना है, तो इसने मेडिकल होता रहा। अब वो पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज पहली बार में होती चली गई, और उसके लिए आज मैं जरूर ये मानता हूं कि आई वाज डेस्टाइंड फॉर दिस, मेरी किस्मत जो थी भगवान ने फौज के लिए ही लिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फौज के साथ शादी करी, काश मैं अपनी बीबी के साथ निभा पाता।
1: क्या बात है। अच्छा कनक साहब, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी। अगर मैं आपके अतीत के पन्नों को पलटूं, आपके बचपन, जिसे आपने अपने बताया कि आपको लगता था यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू वर फुल ऑफ लाइफ, बचपन को जीना चाहते थे, खूब दुनिया को देखना चाहते थे, अपनी तरह से चीजों को करना चाहते थे। आपने कहा कि शैतानियां भरपूर करते थे, शैतानियों से भी ऊपर शैतानी करते, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए 2 बार। क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही, या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में? सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
0: नहीं, बट मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी,
1: अच्छा,
0: बढ़
1: यहां भी
0: चढ़ के,
1: शैतानी,
0: बढ़ चढ़ के,
1: क्या बात है।
0: जो बारिश में मैं अपने एज अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर नहीं कर पाया कि मैं शर्ट खोल कर निक्कर पहन कर बारिश में
1: अच्छा,
0: भीगूं और इंजॉय करूं, जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया
1: वाह,
0: अपने जवानों के साथ, कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे, अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे उतार सकते हो। हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे तो तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो

0: अभी भी याद कर सकता हूँ, एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम। नंगा टीम का मतलब है आपकी बनियान नहीं होगी
1: अच्छा
0: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी। पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था कि यार बनियान उतारने को मिल रहा है। सो मैंने मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी। मैंने अगर ऑपरेशनल शैतानी भी बोलो तो उसमें भी मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी कि जहां लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने पूछा जरूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ कि
1: अच्छा
0: आपने क्यों किया, बट हमने अपनी तरफ से खुल के जिंदगी जी है फौज के लिए और फौज की मौज के लिए।
1: वाह क्या बात है। वो जो आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया। और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया, और बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है। तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अगर इनके कैनवस को देखूं ना मैं, तो मैं कहूंगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ। व्हाई? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है, और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है। लेकिन लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है, और इसकी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं। अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। भले ही आपने अपनी जिंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो, पर मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे। जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है।
1: नहीं, देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूंगा इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे, और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस, हम गलत जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहाँ रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे हूँ तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे को कभी नहीं नज़र आया कि कहीं किसी ने आँख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर, तो सिर्फ इधर ही होगा, उधर का मामला हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया। मतलब हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा, किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई। बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो तू करेगा। सो दैट इज द वे जो लाइफ है। और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है। आप में और आपके जवान में फर्क नहीं है, फर्क है तो सिर्फ कंधे का है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं। उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है, तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूँ कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं, निक्कर पहनी है, जूते पहने हैं, इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। जिसको बोलते हैं ना, कंधे से कंधा नहीं, छाती से छाती टकराती है। और वहाँ हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा अफसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है या नहीं। यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी। सलूट मारना है, सलूट सही मारना ही पड़ेगा। इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें आपकी टुकाई नहीं होगी, मेरे तरीके से ठुकाई होगी। बड़ा सीधा सीधा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है, मुझे आज तक उसमें ये नज़र नहीं आया कि किसी ने ये कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा। आज भी लोग कहते हैं, सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया, पता नहीं आज किसको लपेटेगा। सो दैट इज अ सिकनेस। सिकनेस को अगर सिकनेस की तरह देखना है तो यस, इट वॉज स्ट्रिकनेस। बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूं, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज होने नहीं दूंगा।
0: जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस दौर की, जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया। सीडीएस क्लियर करने के बाद घर पर बताया, पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
1: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे। क्योंकि देखिए, ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉर्पोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया। 2800 रुपए मेरे को पहली तनख्वाह वहां मिली, और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी। ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपए महीने

0: ना वहां पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं, बोला आपके जमा होते रहेंगे, आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे. सो माई फादर वॉज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो, अच्छा खासा तुम्हारे पास 2500 का जॉब है, अब आप जीरो पर आ जाओगे. और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकेंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपये थी, मतलब 2800 से भी कम. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया. हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूँ ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को हुई थी.
1: अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी हैं। तो 1987 में आप ओटी गए, ओटीए चेन्नई, जहाँ से आपने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद फिर 1988 में कमीशन हुए,
0: जी
1: तो
0: जी
1: पहला डिप्लॉयमेंट कहाँ डिप्लॉय किए गए?
0: ओ, ये मेरी बदकिस्मती है
1: अच्छा।
0: कि पोस्टिंग आई जोरियां, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ.
1: अच्छा।
0: सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा. लेकिन यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइड्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो उस समय 1988 वाले वो मेरठ में हुए थे. और आज मैं कह सकता हूं तब से लेकर अब तक कभी कोई राइड नहीं हुआ मेरठ में,
1: वाह।
0: तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था. और वहीं से पंजाब की ऑप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला. तो मेरे को आज भी याद है, हम धालीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहां थे, जहां पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था. तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन. और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूँ. तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया. मैंने कहा अगर यहाँ तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा. लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो व्हाई नॉट कार्बाइन. सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड, मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना सूटकेस पकड़कर. सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट. हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें.
1: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उस वक्त, जब जैसे जैसे ऑपरेशंस मिलते होंगे और जिन जिन ऑपरेशंस का आप हिस्सा बनते गए, तो जैसे आप खुद एक डेस्टिनी लावर हैं कि किस तरीके से आपकी किस्मत आपको आर्म्ड फोर्सेस ले आई, उसी तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशंस मिलेंगे और जिस जिस ऑपरेशन पर आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज़्यादा।
0: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी.
1: अच्छा।
0: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ. मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर, जीओसी कुछ नहीं. मुझे लगता था मैं ही हूँ, मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं. सो गौरवान्वित तो मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए. हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे.
1: वाह, क्या बात है। ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ अब मुझ पर निर्भर करता है और मेरे फैसले से कायापलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग। आपने अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मेरे कंधों तले है। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं कर्नल
0: बिल्कुल
1: साहब?
0: बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था. इसमें कोई शक नहीं है मुझे. आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं.
1: वाह, क्या बात है।
0: मैं आपका शो कंडक्ट कर रहा हूं
1: वाह,
0: मुझे.
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: ये मैंने अपनी फौज में जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है. मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूं या मैं देश के लिए लड़ रहा हूं. मैं लड़ रहा था, काम कर रहा था मेरी रेजिमेंट और मेरे जवानों के लिए.
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो वो और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं आपके जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि हर ऑपरेशंस मैं कहती हूँ कि शायद

0: हमारे पास इतना समय नहीं कि हर ऑपरेशन पर बात कर पाए, पर निश्चित रूप से आपके पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन ऑपरेशंस का नाम जरूर ले सकते हैं यहाँ पर।
1: देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि सबसे रिवॉर्डिंग ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो आई थिंक मेरे लिए जेएन के रहेगा श्रीनगर,
0: जी
1: क्योंकि उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं जेएनके के सो कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी में था और मेरी वहाँ शादी हो गई. सो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? अगर कहीं किसी और दिल्ली विल्ली में होता तो पता नहीं कोई शादी करता या नहीं, बट हमारी श्रीनगर में शादी हो गई.
0: वाह क्या बात है। तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
1: नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे फौज में जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं, तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर श्रीनगर में थे. उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठा करके सामने रख दी लड़की. अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है,
0: वाह
1: ऐसा
0: वाह।
1: मुझे लगता है. एंड वी गॉट मैरिड,
0: क्या बात है,
1: श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी.
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई, और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो आपको मिल गई। अच्छा, अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में आप बार बार जिक्र करना चाहते हैं।
1: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए. कारगिल, हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं. आज भी मेरे घर मेरे मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये लाल हाथ दिखते हैं. कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में. उन हाइट्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस आ सकता है कि ये लड़ाई हो ही नहीं सकती जिस लड़ाई को हमारी फौज लड़ गई, जिन जिन जिन टारगेट्स के ऊपर हम गोला दाग रहे थे, जिसके ऊपर हमारे अपने लोग चढ़ रहे थे, हम उसमें से एक थे, कि उस चढ़ाई को चढ़ना इम्पॉसिबल, मेरे ख्याल बड़ा छोटा वर्ड होगा. दैट इम्पॉसिबिलिटी वॉज मच बिगर, बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी. बट उसके बावजूद जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अनहोनी चीजें करते जा रहे थे, वहां से निकल कर आ रहा था कि यार ये करना अब हमारे लिए रूटीन है. जब पहली पोस्ट आप कैप्चर करते हो तो तकलीफ होती है, उसके बाद आई थिंक बड़ा फेमस डायलॉग टाइगर हिल वाली साइड में चला, हम बटालिक साइड में थे, लेकिन वहां से और यहां से कॉमनैलिटी ये आई कि अब दिल ना मांगे मोर, अब दिल मांगे मोर एंड मोर.
0: कैप्टन विक्रम बत्रा,
1: सीधी सीधी मोर एंड मोर पर बात आ गई थी. कोई जवान कोई अफसर सेटिस्फाइड ही नहीं था कि एक पोस्ट कैप्चर कर ली तो अब यहां रुको, अगले पर, उससे अगले पर. वो जो स्पिरिट थी मुझे लगता है वो सब इम्पॉसिबिलिटीज को पीछे कर बैठी और अपने आप में वो लड़ाई एक विनिंग लड़ाई में कन्वर्ट हो गई. अदरवाइज मैं आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं, 15,000-18,000 फीट पर जहां ऑक्सीजन कंटेंट आपको 30% मिलता है, सांस लेना अपने आप में तकलीफ है, आप वहां भाग रहे थे, आप वहां दुश्मन के पोस्ट की तरफ भाग रहे थे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए. दिस वॉज अ इम्पॉसिबल लड़ाई. एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूं 528 लोग उस दिन मारे गए. मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, 528 लोग उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए, 527 ऑफिशियल है, 528 वहां आपके सामने बैठा है. हम उसमें अपनी जान नहीं दे पाए. मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ क्रूरता करी कि मैं वो 528वां आदमी होना चाहिए था जिसे उन 527 का बराबर का हकदार मानना चाहिए.
0: शब्द नहीं है, निःशब्द हूँ। एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रही हूँ जो जिंदगी से भरपूर है, जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, जो बहुत जीवंत है, जो जीने की वजह बन सकता है, जो जीने की वजह बन रहा होगा लाखों लोगों को जो इस वक्त सुन रहे होंगे। वो ये कहता है कि वो अपने प्राण नहीं दे पाया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। शब्द नहीं है हमारे पास इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातें सुनने

0: के बाद किस किस मिट्टी के बने हैं आप, ये जरूर बताएं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूंगी कि एक एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर, अपनी माँ की आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग देने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहाँ पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आइज। किस तरह का पल वो रहा होगा, शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आपकी नम आंखें इस बात का सबूत हैं, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहाँ साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर, एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचकर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूँ देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए। आप और उन तमाम, आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन। हम यही कहते हैं, अगर आप नहीं तो हम नहीं। एक और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको मौका मिला, आपको ये मौका दिया गया, जो आपने अपना कार्यकाल जिया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने वो यूनिफॉर्म, वो पोशाक पहनी है, चौड़ा अपना सीना चौड़ा कर अपने मेडल्स लगाए हैं, अगर वो मौका दोबारा से मिले, क्या आप दोबारा से जीना चाहेंगे उन्हीं पलों को?
1: मैं पहले वाला मौका ही अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ।
0: अभी तक
1: वो यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अभी भी है।
0: वाह।
1: वो मेरे दिमाग पर अभी भी है। और जब आप कहती हैं मेरी आंखें नम है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे गर्व है उन नम आंखों पर कि उन 527 जानों के लिए अगर आज भी मैं एक बूंद अपनी आंखों से पानी बहा पाता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी। और जहाँ तक बात है रीलिव, मैं आपको पता नहीं कैसे लग गया कि आई हैव टू रीलिव। मैं तो ऑलरेडी लिव कर रहा हूँ। मेरी यूनिफॉर्म ना उतरी है ना उतरेगी। एज फार एज आई एम कंसर्न, फौजी दिखाने के लिए आज मैंने आपके सामने टाई पहन ली होगी, लेकिन इस टाई के पीछे मेरी यूनिफॉर्म अभी भी बिल्कुल बरकरार है।
0: वाह, आपने आज निशब्द कर दिया। आपके किरदार के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू, किसी आर्मी ऑफिसर के इतने सारे पहलुओं को जानने के बाद ये लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि किस मिट्टी के बने हैं, हम ये कहेंगे भारत की मिट्टी से बने हैं, कण कण भारत की मिट्टी से बने हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा। और शायद आपने देश के बारे में सोचा, शायद आप देश के लिए अब तक सिर्फ देश के लिए जी रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा हैं जो आर्म फोर्सेस जाना ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए मिसाल हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सबसे आप?
1: मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जिंदगी जीनी है तो फौज की जी लो, अदरवाइज जी तो सभी रहे हैं, बट अगर जिंदगी जीनी है तो आपके पास एक ही जिंदगी है और उसे मैं कहता हूं फौजी जिंदगी। अदरवाइज आप जी वैसे भी लेंगे, ऐसे भी लेंगे, बट अपने आप में मेरा इसमें अहंकार नहीं है, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप फौजी जिंदगी नहीं जी पाए तो भी आपके पास मौका है, अपने देश के लिए जरूर जी लो। देश के लिए जी लिए तो आप ये समझ लेना कि आप फौजी की जिंदगी जी लिए।
0: बहुत खूब। यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ जो मैं दिल से चाहती हूँ पूछूं। एक वो पल जहाँ आप बहुत मेजर ऑपरेशन में हैं, जहाँ पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, जहाँ पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहाँ आपके बहुत सारे साथी पल पल, क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उस उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी ऑफिसर्स के लिए, उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
1: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजंस लेना, और आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, आर्टिलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर सॉल। दैट मींस जो OP ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बुलाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूं और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बुला रहा है,

0: सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गन के 18 गोले आके क्या बचेगा। तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर, सारी चीजें ट्राई कर ली उस 1 मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर।
1: क्या
0: और वो फायर बोलना लिटरली अमाउंट्स टू कि मुझे नहीं मालूम कि वो ओपी ऑफिसर और वो कंपनी कमांडर उस फायर में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, बट उस गन एरिया के अंदर मैं अधमरा हो जाता हूं कि यार ये फायर मैंने अपने लोगों के ऊपर किया है, अपने लोगों द्वारा मांगने पर। अब इसमें गलती थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, बट इसको बोलते हैं कि फॉर्चून्स एंड द गॉड ऑल्सो स्टैंड्स विद पीपल हु आर ब्रेव। ब्रेवरी के साथ भगवान हमेशा होता है। उस अकेले जिंदगी के एक SOS फायर में हमारा कोई नहीं मरा, पाकिस्तान के सारे मारे गए।
1: क्या बात है।
0: सो ये डिसीजन लेना आई थिंक टफेस्ट पार्ट होगा एक गनर के लिए, कि उसे मालूम है कि आप फायर कहाँ कर रहे हो, अपने ओन ट्रुप्स पर कर रहे हो, और उसके बावजूद आप वो फायर कर देते हो।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग जो है हमें हमारी भारतीय सेनाएं देती हैं, और आप जैसे ऑफिसर्स को बनाती हैं, और आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, देश प्रेम से, और कहीं ना कहीं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मैदान जंग में हमेशा फतह हासिल करवाते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे संदेश भी आए हैं, और हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेश भल्ला, एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से, जय हिंद लिख भेजा है इन्होंने। सौरभ बनेजा का हमारे पास गाजियाबाद से संदेश है, गुड आफ्टरनून। एक संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है पंकज का, अमरावती महाराष्ट्र से, और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी बातें सुनने के बाद कि आपने भारतीय सेना के बारे में, और भारतीय सेना क्योंकि जब हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में आपने हमें रूबरू कराया, ये और भी प्यारी और सुखद बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। संदेश हमारे पास रोहित मेहर का आया है ओडिशा से, और इनको आपकी खुश मिजाजी बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिंदा दिली पसंद आई। थाईलैंड से हमारे पास संदेश आया है मिस्टर अमोल भवाने का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं, और हम यही चाहेंगे कि आप अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें। एक संदेश और है, बहुत बड़ा संदेश है, पर यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना को सल्यूट किया है, वंदे मातरम कहा है, और ये हैं शंकर लोड द्वारका से। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शैलेंद्र सिंह आपका, आप स्टूडियो में आए, और सबसे बेहतरीन बात आपके व्यक्तित्व को पहचानने के बाद हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन अपने अंदर के व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि यही जिंदा दली हमें परचम लहराने पर प्रेरित करती है।
0: देश अकेला है, जिंदगी अकेली है, जी लीजिए इसे अपने देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने साक्षात्कार किया, बात की कर्नल शैलेंद्र सिंह से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके समक्ष, आप सभी ऑफिसर सैनिकों के समक्ष अपना शीश झुकाए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमेशा गर्व से कहेंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने हमें हमेशा मुस्कुराने की, जीने की वजह दी है, और आपको शत शत प्रणाम, शत शत नमन।

टाटा सत्या साइनिंग ऑफ। सत्या से अभी आप तेलुगु प्रोग्राम सुन रहे थे। अब वक्त हो चला है उर्दू प्रोग्राम नैरंग का। इस वक्त रात के 9:22 हुए हैं। अब आगाज होता है उर्दू प्रोग्राम नैरंग का।

0: आदाब अर्ज़े सामईन, आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपकी आरजे नूरअफशां। आज के इस नैरंग प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हर्फ़े ताबिंदा, मुशायरा, गीत सुरीले गाता जा, और इसके अलावा कुछ हम बातें करेंगे। आज जैसा कि 30 जुलाई है तो आज होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस, तो इस बारे में भी हम कुछ बातें करेंगे। तो चलिए आगाज़ हम करते हैं हमारे प्रोग्राम का हर्फ़े ताबिंदा से। पेशकश है आयशा बतूल की।
1: इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने का शर्फ हासिल है। हमें अक़्ल व शऊर और बुलंदियाँ अता की गई हैं। इन तमाम कमालात के दरमियान एक ऐसी सिफ़त भी हमें दी गई है जो हमें दूसरों से मुमताज़ बनाती है, वो सिफ़त है आजिज़ी। लोगों की तबीयतों और उनके मुकाम व मर्तबे के एतबार से उनके लिए नरमी का पहलू इख्तियार करना और अपने आप को हकीर, कमतर और छोटा ख्याल करना आजिज़ी व इनकसारी कहलाता है। अपने आप को तकबर से बचाना और आजिज़ी व इनकसारी इख्तियार करना हर मुसलमान पर लाजिम है। सामईन।

0: रहे आजिज़ी का मतलब कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी हकीकत को पहचान लेना है। ये दिल की एक ऐसी कैफियत होती है जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। जिनमें आजिज़ी पाई जाती है वो दूसरों की राय का एहतराम करते हैं, नरम रवैया अख्तियार करते हैं। याद रखिएगा, कायनात का पहला गुनाह तकब्बुर था। इब्लीस ने खुद को बरतर समझा और नाफरमान कहलाया और फिर जन्नत से निकाला गया। तारीख गवाह है कि अना के खौल में बंद रहने वाले, तकबर करने वाले आज सफ़े हस्ती से मिट गए हैं। जिस शख्स को माल, जमाल, लिबास या फिर इल्म दिया गया हो और फिर उसने उसमें आजिजी इख्तियार ना की, तो ये नेमतें उसके लिए रोज़े महशर वबाल होंगी। तकबर आजिजी की जिद है, और जब तक तकबर किया जाता है, आजिजी जैसी सिफत पैदा नहीं हो सकती। आजिज बनने के लिए तकबर की आदत को तर्क करना होगा। जिस इंसान में तकबर या खुद पसंदी पाई जाती है, तो फिर आजिजी वो इनकसारी उससे रुखसत हो जाती है। जिस तरह से तकबर गुनाह है, उस तरह से खुद पसंदी भी एक बातिनी बीमारी है। खुद पसंद इंसान से आजिजी वो इनकसारी कोसों दूर रहती है। लिहाजा अपने आप में आजिजी वो इनकसारी पैदा करने के लिए खुद पसंदी से अपने आप को बचाइए। जब किसी इंसान के सामने उसकी खूबियां ही बयान होती हैं, तो फिर वो तकबर में मुब्तला हो जाता है, आजिजी नहीं करता, क्योंकि आजिजी तो अपनी खूबियों को कम जानने और खामियों को ज्यादा जानने का नाम है। लिहाजा हमें अपना मुहासिबा करते रहना चाहिए, ताकि हमारी खामियां सामने आती रहें और आजिजी करना आसान हो जाए। एक रिवायत है कि बंदा उस वक्त तक आजिजी नहीं कर सकता जब तक अपने आप को पहचान न ले। जब कोई शख्स अपने आप को किसी से आला वो बरतर जानता है, तो फिर तकबर में मुब्तला होता चला जाता है। लिहाजा हम सबको दूसरों को अपने से आला वो बरतर जानना चाहिए, ताकि दिल में आजिजी वो इनकसारी पैदा हो सके। दिल के जज्बात का इजहार जबान से ही होता है, और इसीलिए जबान को दिल का तर्जुमान कहा जाता है। ऐसे अफराद जिनके दिल आजिजी से भरपूर होते हैं, वो फिर फजूल गुफ्तगू से बचते हैं, बस काम की ही बातें करते हैं। जबकि आजिजी से खाली दिल रखने वाला शख्स सुनने से ज्यादा दूसरों को सुनाने की कोशिश करता है। आजिजी वो इनकसारी पैदा करने के लिए अपनी गलती को शुक्रिया के साथ तस्लीम करना सीखिए। ऐसे अफराद जो आजिज होते हैं, जिनमें आजिजी वो इनकसारी पाई जाती है, वो अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं, अपनी इसलाह करने की कोशिश करते हैं, बिलावजह अपने मौकफ पर अड़े नहीं रहते। तकबर से बचने और आजिजी इख्तियार करने का सबसे आसान तरीका ये है कि दूसरों की जात में अच्छाइयां ढूंढी जाए। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई दूसरों में खामियां ढूंढने और अपने आप को बरतर साबित करने में लगा हुआ है। आजिजी वक्त की अहम जरूरत है। अपने आप को आजिज बनाइए, अपने अंदर आजिजी और इनकसारी पैदा कीजिए, अपने लहजे में नरमी लाइए, ताकि आपकी शख्सियत में वखार पैदा हो सके, आप दूसरों से मुमताज और नुमाया नजर आए। अलामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
1: मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। यह थी आयशा बतूल, जिससे आप हरफे ताबिंदा सुन रहे थे।

आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर। समय आज 30 जुलाई है, यानी आज मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, यानी इंसानी स्मगलिंग एक बहुत ही बड़ा जुर्म है जो नाकाबिले बर्दाश्त है हर एक के लिए, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। हर साल 30 जुलाई को दुनिया भर में वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद आवाम में इस संगीन जुर्म के बारे में शऊर बेदार करना और मुतासर अफराद के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशों को फ़रोग़ देना है। इंसानी स्मगलिंग एक ऐसा गैर इंसानी जुर्म है जिसमें लोगों को धोखे, लालच, धमकी या ज़बरदस्ती के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके इनसे जबरी मशक्क़त, भीख मंगवाना, गैर कानूनी काम करवाना या जिनसी इस्तेसाल जैसे जुराइम का निशाना बनाया जाता है।

स्मगलिंग के असरात सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरे माशरे को मुतासर करते हैं। मुतासर अफराद जिस्मानी और जहनी अज़ियत का शिकार हो जाते हैं, इनकी आज़ादी छीन ली जाती है, इनके बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल होते हैं।

इंसानी स्मगलिंग एक बहुत संगीन मसला बन चुका है। इस मसले से निमटने के लिए हुकूमतें, क़ानून नाफिज करने वाले इदारों, समाजी तंजीमों, तालीमी इदारों और आम शहरियों को मिलकर काम करना होगा। आवाम में आगाही पैदा करनी होगी। तालीम को फ़रोग़ देना ज़रूरी है ताकि पहचान सकें कि यानी कौन सा रास्ता किधर जा रहा है और हमें क्या करना चाहिए। रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करना, मशकूक सरगर्मियों को फौरी उसी वक्त रोकना और उसकी फौरी तला देना और मुतासरा अफराद की बहाली के लिए मौसर इक़दामात करना वक्त की अहम ज़रूरत है।

अगर हम अपने इर्द गिर्द होने वाले मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखें, दूसरों को इस जुर्म के खतरात से आगाह करें और इंसानी हकूक का एहतराम करें, तो इस लानत के खात्मे में हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये सिर्फ किसी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इदारे या किसी तंजीम का काम नहीं है, बल्कि ये हर फर्द का काम है, हम सब का काम है कि इस सरगर्मियों को रोकने के लिए हम आगे बढ़ें। हम जहां पर भी रहते हैं उस इलाके में हम नज़र रखें, हम जहां काम करते हैं वहां पर हम नज़र रखें कि कुछ गलत तो कहीं नहीं हो रहा है, और हम यानी जिस रास्तों से हम गुज़रते हैं वहां पर भी हम, जैसा कि हो सकता है कि किसी बस स्टॉप पर हमें कुछ नज़र आ जाए कि कोई यानी इस तरीके की कोई सरगर्मी या कोई मशकूक शख्स हमें नज़र आए, तो हम इस तरीके से जुर्म को रोकने में कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। यानी बूंद बूंद से बूंद बूंद से दरिया बनता है, उसी तरीके से हमारी थोड़ी सी मदद किसी को बचाने के लिए, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए काम आएगी। तो इस तरीके से हम इस लानत को यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं अगर हम सब आगे बढ़ें।

0: आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर उर्दू प्रोग्राम नए रंग जारी है। तो चलिए हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनाते हैं मुशायरा। शोरा हैं डॉक्टर फारूक शकील, सरदार सलीम और सरवर हाशमी।
1: मोहतरम सामईन, आदाब अर्ज है। नए रंग की महफिल मुशायरा में आपका खैर मकदम है। इस मुशायरे में हैदराबाद के मुमताज़ शुराए कराम ने हिस्सा लिया है, जिनके अस्माए ग्रामी यूं हैं: डॉक्टर फारूक शकील, जनाब सरवर हाशमी, जनाब सरदार सलीम। सबसे पहले मैं सरदार सलीम साहब से ख्वाहिश करता हूं कि वो अपना कलाम पेश फरमाएं।
2: आदाब सामईन, कुछ ताज़ा कलाम पेश खिदमत है। गज़ल का मतलब समाप्त करें। अर्ज़ किया है कि तेरी खामोश निगाही ने कुछ कहा तो नहीं, तेरी खामोश निगाही ने कुछ कहा तो नहीं, बगैर हाथ लगाए मुझे छुआ तो नहीं, बगैर हाथ लगाए मुझे छुआ तो नहीं। शेर देखें कि हर एक बात पे ये कौन टोकता है मुझे, हर एक बात पे ये कौन टोकता है मुझे, मेरे वजूद में कोई मेरे सिवा तो नहीं, मेरे वजूद में कोई मेरे सिवा तो नहीं। इसे गुजारना मुश्किल है चंद आहों में, इसे गुजारना मुश्किल है चंद आहों में, ये उम्र है शबे फुरकत का रत जगा तो नहीं, ये उम्र है शबे फुरकत का रत जगा तो नहीं, इसे गुजारना मुश्किल है चंद आहों में, ये उम्र है शबे फुरकत का रत जगा तो नहीं। और ये शेर मुलाहजा करें कि मैं उससे खौफ ज़दा किस लिए रहूं आखिर, मैं उससे खौफ ज़दा किस लिए रहूं आखिर, अदू के हाथ में पत्थर है आईना तो नहीं, अदू के हाथ में पत्थर है आईना तो नहीं। और ये मख्ता मुलाहजा फरमाएं कि सलीम, रोशनी यक लख्त कैसे तेज हुई, सलीम रोशनी यक लख्त कैसे तेज हुई, हवा का हाथ दिए की तरफ बढ़ा तो नहीं, हवा का हाथ दिए की तरफ बढ़ा तो नहीं, तेरी खामोश निगाही ने कुछ कहा तो नहीं। और ये गज़ल मुलाहजा करें सामईन के, मतलब अर्ज़ करता हूँ कि अजब है सूरत हालात अब के, अजब है सूरत हालात अब के, हुई बरसात में बरसात अब के, हुई बरसात में बरसात अब के, अजब है सूरत हालात अब के। हुस्ने मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ कि भरे हैं जहन में खदशात अब के, भरे हैं जहन में खदशात अब के, हैं सारे दोस्त मेरे साथ अब के, हैं सारे दोस्त मेरे साथ अब के। और ये शेर देखें कि बदन में फूल भी चुभने लगे हैं, बदन में फूल भी चुभने लगे हैं, बहुत नाजुक हैं एहसासात अब के, बहुत नाजुक हैं एहसासात अब के, अरे लगी है शर्त मेरे आंसुओं से, लगी है शर्त मेरे आंसुओं से, समंदर को मिलेगी मात अब के, समंदर को मिलेगी मात अब के। और ये शेर मुलाहजा करें कि बना दूंगा तेरे माथे का झूमर, बना दूंगा तेरे माथे का झूमर, लगा जो चांद मेरे हाथ अब के, लगा जो चांद मेरे हाथ अब

और ये आखिरी शेर है इस गजल का कि जरा चौकन्ना चौकन्ना हूँ मैं भी, जरा चौकन्ना चौकन्ना हूँ मैं भी, है दुनिया भी लगाए घात अब के, है दुनिया भी लगाए घात अब के, सलीम अल्फाज बोदे लग रहे हैं, सलीम अल्फाज बोदे लग रहे हैं, है ऐसी शिद्दते जज्बात अब के, है ऐसी शिद्दते जज्बात अब के। और समीन, एक गज़ल से पहले दो शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। देखें कि मैं जैसा सोचता हूँ काश वैसी जिंदगी होती, मैं जैसा सोचता हूँ काश वैसी जिंदगी होती, ये दिल पत्थर का होता और दुनिया कांच की होती, ये दिल पत्थर का होता और दुनिया कांच की होती। अरे चरागों से अंधेरा मिट न पाया करियाए गम का, चरागों से अंधेरा मिट न पाया करियाए गम का, कि मैं खुद को जला लेता तो शायद रोशनी होती, कि मैं खुद को जला लेता तो शायद रोशनी होती। और ये गज़ल मुलाहजा करें, मतलब अर्ज किया है कि दिन भर की थकन जोड़ के रूमाल पे रख दूँ, दिन भर की थकन जोड़ के रूमाल पे रख दूँ, मिट्टी से सने हाथ तेरे गाल पे रख दूँ, मिट्टी से सने हाथ तेरे गाल पे रख दूँ। शेर देखें कि नाखून से तराशा था जहाँ तूने मेरा नाम, नाखून से तराशा था जहाँ तूने मेरा नाम, एक ख्वाब सा लम्हा मैं उसी डाल पे रख दूँ, एक ख्वाब सा लम्हा मैं उसी डाल पे रख दूँ, जुल्फों से तेरी फाल घटाओं का निकालूँ, जुल्फों से तेरी फाल घटाओं का निकालूँ, और नाम सितारों का तेरी चाल पे रख दूँ, और नाम सितारों का तेरी चाल पे रख दूँ। और ये शेर मुलाहजा करें, तू कह दे तो मैं डाल दूँ रद्दी में किताबें, तू कह दे तो मैं डाल दूँ रद्दी में किताबें, संदल की ये शाखें भी किसी टाल पे रख दूँ, संदल की ये शाखें भी किसी टाल पे रख दूँ। और ये शेर सुनाकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। देखें कि हुक्के की सुबुक नए पे अजब जंग चढ़ा है, हुक्के की सुबुक नए पे अजब जंग चढ़ा है, फिर धो के इसे गांव की चौपाल पे रख दूँ, फिर धो के इसे गांव की चौपाल पे रख दूँ, दिन भर की थकन जोड़ के रूमाल पे रख दूँ, मिट्टी से सने हाथ तेरे गाल पे रख दूँ। मोहतरम सामईन, कुछ मुतफरीक अशआर और पेशे खिदमत हैं। अर्ज किया है कि कई रंगों के हंसने और रोने रखे जाते हैं, कई रंगों के हंसने और रोने रखे जाते हैं, मैं वो शोकेस हूँ जिसमें खिलौने रखे जाते हैं, मैं वो शोकेस हूँ जिसमें खिलौने रखे जाते हैं, दिले नादा ये बस्ती बेनमक जज्बों की बस्ती है, दिले नादा ये बस्ती बेनमक जज्बों की बस्ती है, यहाँ आंसू फकत पलकें भिगोने रखे जाते हैं, यहाँ आंसू फकत पलकें भिगोने रखे जाते हैं। और ये शेर मुलाहजा करें कि हमें जीने को दी जाती है कड़वी जिंदगी जितनी, हमें जीने को दी जाती है कड़वी जिंदगी जितनी, नज़र में ख्वाब उतने ही सलोने रखे जाते हैं, नज़र में ख्वाब उतने ही सलोने रखे जाते हैं, सफ़र दरिया के बीचों बीच आसानी से कटता है, सफ़र दरिया के बीचों बीच आसानी से कटता है, किनारे गालिबन कश्ती डुबोने रखे जाते हैं, किनारे गालिबन कश्ती डुबोने रखे जाते हैं। और ये बिल्कुल ताज़ा गज़ल के कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। देखें कि मेरी आगोश पैरहन तेरा, मेरी आगोश पैरहन तेरा, तू मेरी रूह मैं बदन तेरा, तू मेरी रूह मैं बदन तेरा,

0: बज्म सजती है जब सितारों की, बज्म सजती है जब सितारों की, नाम लेती है हर किरण तेरा, नाम लेती है हर किरण तेरा। शहर में भी हैं लड़कियां लेकिन, शहर में भी हैं लड़कियां लेकिन, मुझको भाए गंवारपन तेरा। अरे नकल तेरी उतारती है सबा, नकल तेरी उतारती है सबा, है हवाओं में बांकपन तेरा। और ये आखिरी शेर आपकी खिदमत में कि मेरी मंजिल है मेरे कदमों में, मेरी मंजिल है मेरे कदमों में, सर में सौदा है जाने मन तेरा, सर में सौदा है जाने मन तेरा, मेरी आगोश पैरहन तेरा, तू मेरी रूह मैं बदन तेरा।
1: गजल पेश कर रहा हूँ, मतला मुलाहिजा फरमाएं कि सलीका मुझ में जीने का बहुत है, सलीका मुझ में जीने का बहुत है, मेरी फितरत में समझौता बहुत है, मेरी फितरत में समझौता बहुत है, और मेरे अंदर है कोई नफ्स दुश्मन, मेरे अंदर है कोई नफ्स दुश्मन, खता पर मेरी चिल्लाता बहुत है, खता पर मेरी चिल्लाता बहुत है, और सुकूने दिल ज़रा लाकर दिखाओ, सुकूने दिल ज़रा लाकर दिखाओ, तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है, तुम्हारे पास तो पैसा बहुत है, और है खुफले मसलहत उसकी ज़ुबां पर, है खुफले मसलहत उसकी ज़ुबां पर, मगर आँखों से वो कहता बहुत है, मगर आँखों से वो कहता बहुत है, और किसी पर कैसे मैं उंगली उठाऊं, किसी पर कैसे मैं उंगली उठाऊं, और मेरा दामन भी तो मैला बहुत है, मेरा दामन भी तो मैला बहुत है, और तमाजत पी के भी देते हैं साया, तमाजत पी के भी देते हैं साया, घने अशजार में ममता बहुत है, घने अशजार में ममता बहुत है। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं कि मियाँ हमने भी तो देखी है दुनिया, मियाँ हमने भी तो देखी है दुनिया, हमें भी तजुर्बा थोड़ा बहुत है, हमें भी तजुर्बा थोड़ा बहुत है, और मख्ता यूँ है कि न फल आए शजर पर और न पत्थर, न फल आए शजर पर और न पत्थर, शकील आंगन मेरा सोना बहुत है, शकील आंगन मेरा सोना बहुत है, सलीका मुझ में जीने का बहुत है, मेरी फितरत में समझौता बहुत है, के रिस रहा है जो शकील आंखों से उसकी पानी, रिस रहा है जो शकील आंखों से उसकी पानी, और दिल में शायद कोई छाला था वो फूटा होगा, दिल में शायद कोई छाला था वो फूटा होगा, वो जो हसास है बिल्कुल मेरे जैसा होगा, उसकी आंखों से भी एहसास पिघलता होगा। एक आखिरी गजल पेश कर रहा हूं, मतलब मुलाहिजा फरमाइए कि सफर में साथ दुआओं की ढाल रखा कर, सफर में साथ दुआओं की ढाल रखा कर, करीब आते नहीं हादसात घबरा कर, करीब आते नहीं हादसात घबरा कर, और हिसारे जात में रहकर सजा न दे खुद को, हिसारे जात में रहकर सजा न दे खुद को, कभी कभी सही अंदर से अपने निकला कर, कभी कभी सही अंदर से अपने निकला कर, और खुदा का शुक्र के बेटी की हो गई शादी, खुदा का शुक्र के बेटी की हो गई शादी, मैं आज चैन से सोता हूँ पाँव फैला कर, मैं आज चैन से सोता हूँ पाँव फैला कर, अगर हो जलना मुकद्दर में बुझ नहीं सकते, अगर हो जलना मुकद्दर में बुझ नहीं सकते, हवा की जद पे चरागों को अपने रखा कर, हवा की जद पे चरागों को अपने रखा कर। आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि रहेगा जिस्म में जब तक निजाम सांसों का, रहेगा जिस्म में जब तक निजाम सांसों का, हर एक जज्बे को अपने रखेंगे गर्मा कर, हर एक जज्बे को अपने रखेंगे गर्मा कर। मख्ता पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए कि तू धोना चाहे अगर दागदार दामन को, तू धोना चाहे अगर दागदार दामन को, शकील फूट के तन्हाइयों में रोए।

करता है सियाभ्र के साथ, चांद इटकेलियां करता है सियाभ्र के साथ, कोई जुल्फों से तेरी खेल रहा हो जैसे, कोई जुल्फों से तेरी खेल रहा हो जैसे, चांद इटकेलियां करता है सियाभ्र के साथ, कोई जुल्फों से तेरी खेल रहा हो जैसे, कोई

जैसे कोई जुल्फों से तेरी खेल रहा हो जैसे, यूं माफी के तलबगार खुदा के बंदे, यूं माफी के तलबगार खुदा के बंदे, अब कोई देर ही में हश्र बपा हो जैसे, अब कोई देर ही में हश्र बपा हो जैसे, यूं माफी के तलबगार खुदा के बंदे, यूं माफी के तलबगार खुदा के बंदे, अब कोई देर ही में हश्र बपा हो जैसे, अब कोई देर ही में हश्र बपा हो जैसे। शेर पेश करता हूं कि उनकी आहिस्ता खिरामी का ये आलम तौबा, उनकी आहिस्ता खिरामी का ये आलम तौबा, आप शारों के तरन्नुम की अदा हो जैसे, आप शारों के तरन्नुम की अदा हो जैसे, उनकी आहिस्ता खिरामी का ये आलम तौबा, उनकी आहिस्ता खिरामी का ये आलम तौबा, आप शारों के तरन्नुम की अदा हो जैसे, आप शारों के तरन्नुम की अदा हो जैसे, सरे महफिल शिकन आलूद ये माथा उनका, सरे महफिल शिकन आलूद ये माथा उनका, खामोशी भी ये मेरी कोई गिला हो जैसे, खामोशी भी ये मेरी कोई गिला हो जैसे, सरे महफिल शिकन आलूद ये माथा उनका, सरे महफिल शिकन आलूद ये माथा उनका, खामोशी भी ये मेरी कोई गिला हो जैसे, खामोशी भी ये मेरी कोई गिला हो जैसे, अमन की बात है हर एक जबां पर इमरोज, अमन की बात है हर एक जबां पर इमरोज, शहर में सारे मोहब्बत की फजा हो जैसे, शहर में सारे मोहब्बत की फजा हो जैसे, अमन की बात है हर एक जबां पर इमरोज, शहर में सारे मोहब्बत की फजा हो जैसे, प्यार इखलास मुरव्वत से ये खाली दुनिया, आज का दौर कोई खैरे खुदा हो जैसे। मख्ता पेश करता हूं कि और भी तख्त नशीं अहले सुकन है सरवर, और भी तख्त नशीं अहले सुकन है सरवर, तेरी महफिल में इमाम शोरा हो जैसे, तेरी महफिल में इमाम शोरा हो जैसे, और भी तख्त नशीं अहले सुकन है सरवर, और भी तख्त नशीं अहले सुकन है सरवर, तेरी महफिल में इमाम शोरा हो जैसे, कोई कशकोल लिए दर पे खड़ा हो जैसे, जिंदगी मुंतजिरे दस्ते खजा हो जैसे, जिंदगी मुंतजिरे दस्ते खजा हो जैसे। दूसरी गजल का मतलास करता हूं, ये बहरे गम ये जिंदगी अल्लाह की पनाह, ये बहरे गम ये जिंदगी अल्लाह की पनाह, बुझती नहीं है तशनगी अल्लाह की, बुझती नहीं है तशनगी अल्लाह की पनाह, ये बहरे गम ये जिंदगी अल्लाह की पनाह, बुझती नहीं है तशनगी अल्लाह की पनाह, दिलकश ये मेरी शायरी अल्लाह की, दिलकश ये मेरी शायरी अल्लाह की पनाह, तस्वीर हूँ बहु तेरी अल्लाह की पनाह, तस्वीर हूँ बहु तेरी अल्लाह की पनाह, तस्वीर हूँ बहु तेरी अल्लाह की पनाह। एक और मतलब देखिए कि किस हाल में है जिंदगी अल्लाह की पनाह, किस हाल में है जिंदगी अल्लाह की पनाह, साहिल के पास घर कोई अल्लाह की, साहिल के पास घर कोई अल्लाह की पनाह। शेर पेश करता हूं कि ये अहले खानदान का आपस में मेल जोल, ये अहले खानदान का आपस में मेल जोल, और रंजिशे ये बाहमी अल्लाह की, और रंजिशे ये बाहमी अल्लाह की पनाह। एक शेर पर तवज्जो चाहता हूं, देखिए, लोगों को क्या गुनाहों का एहसास अब नहीं, लोगों को क्या गुनाहों का एहसास अब नहीं, क्या चाहते नहीं अभी अल्लाह की पनाह, क्या चाहते नहीं अभी अल्लाह की पनाह, पहले के लोग और थे ये लोग और हैं, पहले के लोग और थे ये लोग।

0: हम और इनसे दोस्ती अल्लाह की, हम और इनसे दोस्ती अल्लाह की पनाह। तपकर गमों की आग में तस्वीर जिंदगी, तपकर गमों की आग में तस्वीर जिंदगी, कितनी हसीन हो गई अल्लाह की पनाह, कितनी हसीन हो गई अल्लाह की पनाह। तपकर गमों की आग में तस्वीर जिंदगी, कितनी हसीन हो गई अल्लाह की पनाह। शेर पेश करता हूँ, तोजा चाहता हूँ कि आईना धोते धोते हुई जख्मी उंगलियां, आईना धोते धोते हुई जख्मी उंगलियां, चेहरे पे कितनी गर्द थी अल्लाह की पनाह, चेहरे पे कितनी गर्द थी अल्लाह की पनाह। आईना धोते धोते हुई जख्मी उंगलियां, चेहरे पे कितनी गर्द थी अल्लाह की पनाह। जलते तो हैं चराग मगर क्या तिलिस्म है, जलते तो हैं चराग मगर क्या तिलिस्म है, घर में नहीं है रोशनी अल्लाह की पनाह, घर में नहीं है रोशनी अल्लाह की पनाह। जलते तो हैं चराग मगर क्या तिलिस्म है।
1: इस मुशायरे का इख्तिताम अमल में आता है। इस मुशायरे में हिस्सा लेने वाले शोराए इकराम के अस्माए ग्रामी यूं थे कि डॉक्टर फारूक शकील, जनाब सरवर हाशमी और जनाब सरदार सलीम।
2: मुशायरा अभी आप सुन रहे थे। शोरा थे डॉक्टर फारूक शकील, सरदार सलीम और सरवर हाशमी।

आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर नैरंग प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनाते हैं गीत सुरीले गाता जा। तो गीतों का सिलसिला तो चल ही पड़ा है और गीत सुरीले भी हम आपको सुनाएंगे और चंद बातें भी हम आपसे करेंगे। एक कहानी जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपको सुनाती हूँ। तो एक नौजवान था अरमान, जो पढ़ लिख जाने के बाद वो बहुत अच्छे पोस्ट पर फायज हो गया और बहुत अच्छी इनकम भी थी उसकी। एक बार यूँ हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ, वो रहता तो था कहीं यानी दूसरे फॉरेन कंट्री में, वो आकर एक बार यानी अपने दोस्तों के साथ वो घूमने आया और उसने देखा कि क्यों ना कहीं पर, यानी मैं तो हमेशा बड़े बड़े शहरों की सैर करता हूँ, बड़े बड़े शहरों को देखता हूँ और वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग देखता हूँ, तो क्यों ना मैं गांव चलूँ और गांव के लोगों को भी देखूँ कि वो किस तरह से रहते हैं और वो यानी उनका गुजर बसर कैसा है और गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, जो उसने कभी देखा नहीं था। ये सोच कर यानी इधर उधर घूमते हुए वो एक सरसब्ज गाँव में पहुँचा जिसका नाम था मीनाबाद। ये गांव कुदरती हुस्न से मालामाल था मगर बुनियादी सहूलियात से महरूम। न पक्की सड़कें, न मयारी स्कूल, न कोई सेहत का मरकज़। लोग खेती बाड़ी और मवेशी पालकर अपना गुजर बसर करते मगर बारिश की कमी से बेरोजगारी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता। तालीम की कमी ने उनकी ज़िंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया था। ये सब देखने के बाद, ये सब घूम कर वो यानी वापस आ गया और अपने दोस्तों से बातें करने लगा और उसने कहा कि यार हम सब तो बहुत यानी अच्छा, हमारी ज़िंदगी की तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लाइफ हम गुजारते हैं, तो और हम जब देखें तो मैं जो यानी मैंने जो मुशाहदा किया है, मैंने जो देखा है कि गांव की ज़िंदगी कुछ एक ऐसा गांव है जो बिल्कुल यानी तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है और वो लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं मैं देख कर आ रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए कुछ किया जाए। तो उनके यानी अरमान के दोस्त भी सीरियस हो गए, वो कहने लगे कि आखिर क्या करना चाहते हो, अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे गाँव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तब यानी सब सोच में पड़ गए, सब लोग यानी हंसी मजाक करना ही उनका कोई मंशा नहीं था बल्कि कुछ सोचने वाले यानी समाज सुधारक भी थे ये सब लड़के, अरमान के साथ साथ उसी तरीके की सोच रखने वाले लड़के थे, लाइक माइंडेड पीपल थे। तो वो सब सोचने लगे कि आखिर क्या करना चाहिए, यानी बहुत सारे मौजूद पर उन्होंने बातचीत की कि अगर हम यानी उनके पास, उनके घर में, उनके घर के खर्च के लिए कुछ पैसे दे दें तो शायद काफ़ी होगा। फिर कुछ यानी कुछ लोगों ने सोचा कि शायद एक हम स्कूल वहाँ पर खुलवा दें और उन्हें तालीम दें तो बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग यानी जितने लोग थे उतने ख्याल थे, सब लोग अपने अपनी बातें एक के बाद एक पेश करने लगे और उनका हल कुछ निकालने के बारे में सोचने लगे।

अरमान और उसके दोस्त इस बारे में बात करते रहे कि उस गांव के लिए, मिनाबाद के लिए क्या किया जाए। तब अरमान के दिमाग में एक सोच आई। उसने कहा कि यार, हम तो इतनी काबिलियत रखते हैं, यानी हम तो फाइनेंशियली इतने साउंड हैं कि हम एक गांव अडॉप्ट कर सकते हैं। हम सब मिलकर, और हो सके तो हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे कॉन्टैक्ट जो बड़े बड़े लोगों से है, वेल सेटल्ड लोगों से, उनसे हम कुछ मदद ले सकते हैं। तो अगर हम एक गांव को अडॉप्ट कर ले तो हम उसकी तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। कुछ देर इस मौजू पर बातचीत हुई, फिर सभी ने इस ख्याल को बहुत ही यानी इस राय को बहुत ही पसंद किया, और सब लोगों ने मिलकर फैसला किया, अरमान और उसके दोस्तों ने, कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम उस गांव को गोद ले सकते हैं, उस गांव को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सोचकर अरमान और उसके दोस्त उस गांव पर यानी उस गांव में जाना चाहते थे, और उस गांव पर पहुंच गए वो लोग। उन्होंने वहां पहुंचकर वहां के बुजुर्गों, खवातीन, नौजवानों और बच्चों से बात की। तब उन्हें पता चला कि वहां के लोग खैरात नहीं बल्कि मौके चाहते हैं। वो मेहनती हैं बहुत, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ काम उन्हें मिल जाए। तो ये देखकर यानी वो सब लोग मुतमईन हो गए कि ये लोग काम कर सकते हैं, अगर हम इन्हें कुछ काम दें तो ये लोग ज़रूर काम करेंगे। ये सोचकर सबसे पहले अरमान और उसके दोस्त और खैरख्वाह अफराद की मदद से स्कूल की मरम्मत करवाई उन्होंने। फर्नीचर का इंतज़ाम किया, पानी और दूसरे ज़रूरियात का इंतज़ाम किया, फिर बेहतरीन टीचर्स को मुकर्रर किया ताकि बच्चे तालीम से महरूम ना रह सकें। तो और ये यानी वो गांव वालों को इस बात के ज़्यादा इल्म नहीं था कि तालीम कितनी ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग रोज़गार के लिए ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और तालीम पर तवज्जो नहीं देते थे। तो उन्हें ये करना पड़ा, यानी अरमान और उनके दोस्तों को, कि घर घर जाकर उन्हें तालीम के बारे में यानी आगाही देनी पड़ी, तालीम के बारे में बताना पड़ा उन्हें। तभी वो जाकर उनके बच्चों का ब्राइट फ्यूचर के बारे में उन्हें समझाना पड़ा। तभी जाकर उन सब ने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया, और तब से बच्चों की ज़िंदगी का एक नया आगाज़ हुआ। बच्चे तालीम की तरफ तवज्जो देने लगे और दिलचस्पी भी दिखाने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि सेहत पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, और इसी गर्ज से उन्होंने एक दवाखाना वहाँ पर कायम किया, जहाँ एक डॉक्टर और दो नर्सेस की खिदमात ली गई और अटेंडर भी रखे गए। ये तिब्बी अमला यानी मेडिकल स्टाफ सिर्फ गांव के लोगों की सेहत का ख्याल नहीं रखता, बल्कि गांव के लोगों में यानी सेहतमंद ग़िज़ा, न्यूट्रिशियस फूड के बारे में भी आगाही देता, जिससे लोगों में शऊर पैदा होता और वह अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, एक के बाद एक, यानी गांव की गांव वो गांव तरक्की की राह पर चलता गया।

आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर गीत सुरीले गाते जा का सिलसिला जारी है और हमारी कहानी भी जारी है। तो हम बात कर रहे थे अरमान और उसके दोस्तों की, जिन्होंने गांव की तरक्की के लिए कदम बढ़ाया और एक के बाद एक चीज़ के बारे में गौर करना शुरू किया। स्कूल और यानी हॉस्पिटल के बाद उन्होंने यानी पानी के मसले की तरफ गौर किया और इस मसले को हल करने की कोशिश की गई। बारिश के पानी को महफूज करने के लिए ज़खायर बनाए गए, नए कुएं खुदवाए गए और पुरानी नहरों की सफाई की गई। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि किसानों को जदीद ज़रई तरीक़ों की तरबियत देना बहुत ज़रूरी है। ये सोच के उन्होंने उनको वो यानी वो साजो सामान भी फराहम किया, उन्हें और तरबियत भी दी। जो तरबियत देने वाले हैं उनको बुलाकर उन्होंने किसानों को तरबियत भी देनी शुरू की और उन्होंने यानी ये बताया कि कम पानी में भी अच्छी फसल कैसे हो सकती है और बेहतर बीज, खाद और ज़रई मशवरे भी फराहम किए गए। क्योंकि अरमान जानता था कि सिर्फ इमदाद से तरक्की मुमकिन नहीं, इसलिए उसने यानी उसने सोचा कि खवातीन के लिए भी कुछ किया जाए, यानी खवातीन को भी हुनरमंद बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो यानी वो भी इंडिपेंडेंट हो सकें, वो अपने आप पर मुनसर हो सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। ये सोचकर उसने सिलाई कढ़ाई और दूसरे हुनर भी ख्वातीन को सिखाने शुरू किए। जो ये काम जानते थे उन्होंने अच्छी सैलरी पर वो लोगों को वहाँ पर बुलाकर यानी वो ख्वातीन को वहाँ पर बुलाकर गांव के ख्वातीन को उनसे यानी सीखने का मशवरा दिया और ख्वातीन में ये सब चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था कि ऐसा कुछ किया जा सकता है और उन्होंने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी नहीं था। तो ये सब काम करने के बाद उन्होंने जो जो वो लोग बनाते थे, जो वो लोग हाथ से अपने हुनर से कुछ यानी बनाते थे, उसको अरमान शहर भेजता था। शहर भेज के वहाँ पर उसको यानी उसके एग्जीबिशन में रखना या उसका सेल करना, ये सब करके जो भी उससे कमाई होती वो उन ख्वातीन को ला कर देता। तो वो लोग बहुत खुश हो जाते और खुश होकर वो लोग यानी घर का काम काज निपटा कर सब एक जगह जमा

हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा काम करने में, बहुत ज़्यादा लगन और मेहनत से काम करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। इस तरीके से हर कोई वो गांव में हर कोई यानी हर कोई कुछ ना कुछ आमदनी का जरिया बनाता गया और गांव तरक्की करता गया।

गांव के सभी लोगों की तरक्की के लिए अरमान और अरमान के दोस्तों ने नौजवानों के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, मरम्मत, इलेक्ट्रिशियन और दीगर फनी कोर्सेज शुरू किए। कई नौजवानों को मुलाजिमतें मिल गईं, जबकि कुछ ने अपने छोटे कारोबार भी शुरू कर लिए। गांव इतना तरक्की कर चुका था कि यानी अब उन्हें रोजगार की तलाश में शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बल्कि वहीं उनका रोजगार यानी रोजगार से जुड़ने के मौके उन्हें मिल गए थे। गांव में शजरकारी मुहिम भी शुरू की गई। हर खानदान ने कम से कम एक दो दरख्त लगाने का अहद किया। चंद वर्षों में वो गांव दोबारा यानी पहले जैसा और उससे ज़्यादा अच्छा और सरसब्ज हो गया। साफ माहौल, बेहतर आबोहवा और खूबसूरत रास्तों ने गांव की रौनक बढ़ा दी। अरमान ने गांव में एक लाइब्रेरी और कम्युनिटी सेंटर भी कायम किया, जहां शाम के वक्त बच्चे पढ़ते, नौजवान नई महारतें सीखते और बुजुर्ग अपने तजुर्बात नौजवान नस्ल के साथ बांटते। इस तरीके से यानी एक गांव को गोद लेने से, एक गांव को अडॉप्ट करने से, कुछ चंद नौजवानों की मेहनत से कई लोग, एक गांव में बसने वाले कई लोगों का यानी सौ हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल गई। वो पूरी की पूरी ज़िंदगी उनकी बदल चुकी है इनके बदले। तो इसी तरीके के काम करने से यानी कोई भलाई करना हो तो यानी मासस में ज़्यादा लोगों की भलाई जिससे हो सकती हो, हम वैसा कुछ कर सकते हों अगर, तो हमें भी वैसा यानी इस तरीके के काम कुछ करने चाहिए कि समाज की भलाई हो जिसमें।

प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा आप सुन रहे थे। उम्मीद है कि इससे जुड़े गीत और हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। मौसम का मजा लीजिए और आज रात अच्छी से नींद लीजिए, अच्छे ख्वाब देखिए और हमें अब इजाज़त लेने की आप इजाज़त दीजिए। तो चलते चलते हम आपको सुना दें पयाम-ए-शब प्रोग्राम पेशकश है नदीम अख्तर ज़ैदी की।

दिल के वीरानों में घूमोगे तो भटक जाओगे, रौनक कूचे वो बाजार से आगे ना बढ़ो। हर इंसान के दिल में कुछ ऐसे दर्द, राज और आजमाइशें पोशीदा होती हैं, जिन्हें हर कोई समझ नहीं सकता। इसीलिए दूसरों के बातिन का फैसला करने, उनकी निजी जिंदगी में बेजा मुदाखलत करने या छुपी हुई बातों की खोज लगाने से गुरेज करना चाहिए। इज्जत उसी

नेक इंसान दूसरों की पर्दापोशी करे, उनकी हुदूद का एहतराम करे और अपने दिल को भी अल्लाह की याद, नेक अमाल और अच्छे अखलाक से आबाद रखे। हर दिल एक अलग दुनिया है, उसके राजों का एहतराम करे, दूसरों की निजी जिंदगी में बिला जरूरत झांकने से परहेज करें। जाहिरी रौनक हमेशा अंदरूनी सुकून की अलामत नहीं होती। अपने दिल को हसद, नफरत और कीने से पाक रखें, यही हकीकी आबादी है। दूसरों के दिलों के राज टटोलने के बजाय अपने दिल को संवारने की फिक्र कीजिए, क्योंकि आबाद दिल ही इंसान की असल दौलत है।

0: आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ देर में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, पेश है इस घंटे की खास खबरें। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने क्वालिफाई किया। वहीं विशाल टी भी 400 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंचे। और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण कल से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। और अब पेश है कार्यक्रम आपकी याद आती रही जरीन के संग।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: तो अभी हम आपकी याद आती रही कि खुमारी से निकले ही नहीं कि उसी का नाम ले लिया। बहरहाल अब हमें गजलों की महफिल में डूबना है, तो प्रोग्राम का नाम है रंग महफिल और हाजिर हूं मैं जरीन कुछ चुनिंदा गजलों को लेकर। कहते हैं ना कि दिल में हजार उलझने और बेलगाम ख्वाहिशों के मेले के बावजूद अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो वाकई ये काबिले तारीफ है। और कुछ खूबसूरत चुनिंदा गजलों को जब आप सुनेंगे ना तो इस मुस्कुराहट में चार चांद लग जाएंगे यकीनन।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. Hamare saath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain aarthik mamlon ke varishth visheshagya Puneet Jain. पुनीत जी नमस्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है
2: धन्यवाद मनोज जी
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड विद मॉडेस्ट गेन सेंसेक्स राइजेस ओवर 250 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स अबव 24,300 मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्लोज इन द नेगेटिव जोन एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल
1: घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी से बढ़त के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 250 अंक से अधिक उछला निफ्टी 24,300 के ऊपर बंद हुआ एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में से अधिकांश घाटे में रहे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम घटे

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब शुरू करते हैं घरेलू बाजार से हालचाल का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में आज कुल मिलाकर तेजी रही, हालांकि मामूली बढ़त के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 274 अंक यानी 0.35% बढ़त के साथ 77,928 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक यानी 0.3% लाभ के साथ 24,317 पर बंद हुआ. हालांकि विस्तृत बाजारों में गिरावट देखने को मिली. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.3% नीचे आकर बंद हुआ. स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में

0: लगभग 0.6% की गिरावट आई।
1: Benchmark domestic equity indices ended with modest gains today. Sensex rose by 274 points, 0.35%, to close at 77,928, while Nifty added 67 points, or 0.3%, to settle at 24,317. However, in the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dropped over 0.3%, while the small-cap 100 index fell nearly 0.6%. Earlier, the markets opened on a subdued note as rising crude oil prices and escalating tensions in West Asia weighed on investor sentiment. After remaining range-bound for most of the session, both the benchmark indices edged higher during the final hour of trading.
0: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर, तो सेंसेक्स में सम्मिलित 30 में से 15 कंपनियां आज लाभ में रही हैं और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली जो प्रमुख कंपनियां रही उनमें मारुति सबसे ऊपर है, इसके शेयर 1.8% लाभ में रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1.7% से अधिक का मुनाफा हुआ। रिलायंस के भाव 1.4% से अधिक ऊपर उठकर बंद हुए। उधर घाटा उठाने वाली कंपनियों में प्रमुख रही अडानी पोर्ट्स, जिसे 3.3% का नुकसान हुआ। इंडिगो के शेयर 0.9% नीचे आ गए। बजाज फिनसर में 0.8% की गिरावट हमने देखी।
1: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 16 out of the 27 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, realty dipped 2.1%, housing finance dipped 1.3%, and mid-small private banks' quality tilt fell 0.8%. In contrast, auto rose by 1.6%, energy advanced over 0.7%, and consumer discretionary gained 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,630 companies declined, 1,601 companies advanced, and 176 companies remained unchanged.
0: नजर डालें रुपए की स्थिति पर, तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के तुलना में रुपया आज 3 पैसे कमजोर हुआ, 95.68 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत जी, बाजार में आज कुल मिलाकर यदि हम देखें तो प्रमुख सूचकांक तो बढ़त में रहे हैं, लेकिन विस्तृत बाजारों में निफ्टी पैक का 100 और यानी स्मॉल पैक और मिड कैप दोनों में हमने कमजोरी देखी, क्या दर्शा रहा है ये बाजार?
2: मनोज जी, देखिए बाजार जो है बहुत ही मैं कहूंगा इंटरेस्टिंग मोड़ पर अभी खड़ा है। कई प्रकार के फोर्सेस इस वक्त शेयर मार्केट के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि जो कंपनी जगत के नतीजे आए हैं, कंपनियों के नतीजे आए हैं, वो कुछ उम्मीद से बेहतर हैं। कुछ क्षेत्र में हम देख रहे हैं थोड़ा गिरावट है, लेकिन करीब करीब वो अच्छे प्रदर्शन है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के। हम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो वहां हम बड़ी उथल पुथल देख रहे हैं। जो एक AI ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेड था, जिससे जापान, कोरिया, और ताइवान जैसी मार्केट्स में बहुत बड़ी तेजी चल रही थी, वहां अचानक बहुत गिरावट आ रही है, तो उसका प्रभाव भारतीय बाजारों पर पड़ता है। FIIs के रुख पर उस पर प्रभाव पड़ता है, और साथ में तो ये जो वेस्ट एशिया में आप वॉर का माहौल देख रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं। कुल मिलाकर यदि मैं ये सब मिलाता हूं, और ये सब बड़े फैक्टर्स हैं, ये कोई छोटे मोटे फैक्टर्स नहीं है, इससे बाजारों पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो हमारा प्रदर्शन भारत का अच्छा रहा है, पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, क्योंकि IT क्षेत्र की कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वहां पर हमने बहुत भारी गिरावट देखी थी पिछले दिनों। कुछ अब हमने पिछले यदि एक या दो सप्ताह को देखें वहां बाइंग हुई है, और 15-20% उछाल भी आया है बड़ी IT कंपनीज के शेयर्स में। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो भारतीय बाजारों से काफी बड़े पैमाने पर उन्होंने पैसा निकाला था, हम वहां पर थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। वहां पर FIIs के द्वारा बाइंग दोबारा से शुरू हुई है, अभी लार्ज कैप्स में कर रहे हैं, लार्जली IT स्टॉक्स में हमने देखा है थोड़ी बाइंग। तो मुझे लगता है कि ये सब फैक्टर्स हमारे सामने हैं, और कुल मिलाकर जो असर आ रहा है सामने वो अच्छा आ रहा है। लार्ज कैप्स में बाइंग हो रही है, मिड कैप्स में जैसे आपने पहले कहा कि थोड़ा वहां पर प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि काफी ज्यादा शेयर्स बढ़े हुए हैं, तो काफी एक मिला जुला रुख है अभी बाजारों का।
1: Well, we saw the Nifty Auto Index go up by 1.6%, and typically when you're looking at a purchase of a passenger vehicle, of course you have, you know, other types of vehicles as well in the computation of the Nifty Auto What do you think in terms of sales and the purchasing power of India? And this is in the context of the central bank also forecasting that for the financial year, they are projecting a growth of 6.6%. And this is amid all the geopolitical tensions and what's happening in West Asia, how we are directly affected by the movement of crude oil and gas through the Strait of Hormuz.
2: So, Arjun, interestingly, automobile industry is taken as a bellwether for the larger economic trends. In India, we have seen that the passenger vehicle sales have been quite robust in spite of all the pressures that you mentioned.
1: Let's not forget that interest rates also play a very important role.
2: Interest rates are important. We recently had the FTA go into application

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz आप सुन रहे हैं। वक्त हो गया है 11:41 और 10 सेकेंड। तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजे गीत के साथ। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत होगा। फिल्म का नाम है वो 7 दिन। स्वागत है आप सभी का।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे हैं। गीत के बोल संतोष आनंद के लिखे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है प्यासा सावन। ग्यारह बजकर 51 मिनट और 9 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड।

11:55 और 14 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत आप सुनेंगे आशा जी की आवाज में। शहरयार के लिखे बोल हैं, खयाम का संगीत है, फिल्म का नाम है उमराव जान। इसी गीत के साथ गीत मेरे मनमीत से अर्पणा को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ, मोहब्बत, मोहब्बत की सबसे प्यारी बात यही होती है कि इसमें हर जवाब सीधा नहीं होता। कभी मुस्कान पहेली बन जाती है तो कभी निगाहें सवाल पूछती हैं, और कभी खामोशी ही सबसे खूबसूरत जवाब बन जाता है। चांदनी रात में जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं या फिर एक दूसरे को याद करते हैं, तो ये एहसास ही मोहब्बत की पहचान हो जाता है। प्यार की ऐसी ही मीठी शरारत, नोक झोंक और मुस्कुराहट जिंदगी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सबब बन जाती है। तो ऐसे में बात गीतों की ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए, इसी श्रृंखला में हम और आप सुनते हैं ये सदाबहार नगमा शमशाद बेगम की आवाज़ में।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कुछ यादें रात के साथ यूं चली जाती हैं जैसे कि वो कहीं ना कहीं दिल में बसी थी। जैसे जैसे चांद आसमान में ऊंचाई की तरफ जाता है, दिल भी किसी अपने के करीब और पहुंचने लगता है। उसकी यादें, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी खामोशी, सब सब याद आता है। सब कुछ फिर से जीने का मन करने लगता है। कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी दूर नहीं जाता, वो याद बनकर हर रात चुपचाप दिल का दरवाज़ा खटखटा देता है। तो अगर इस रात भी एक ऐसा ही कोई चेहरा अगर आपकी भी पलकों पर ठहरा हुआ है, तो ये सदाबहार गीत नगमा उसी एहसास के नाम। आइए सुनते हैं, फिल्म है पारसमणि, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला उसी दर के हो गए। फिर यूं हुआ कि गैर को दिल से लगा लिया, फिर यूं हुआ कि गैर को दिल से लगा लिया, अंदर वो नफरतें थी कि बाहर के हो गए। तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला उसी दर के हो गए।

जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। उसकी बातें मुझे खुशबू की तरह लगती हैं, उसकी बातें मुझे खुशबू की तरह लगती हैं, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, बात इतनी है कि वो मुझसे जफा करता है, फूल जैसे कोई सहरा में खिला करता है, जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है।

तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं। गैर वफाओं में सदाकत भी हो और शिद्दत भी, फिर तो एहसास के पत्थर भी पिघल जाते हैं। बेवफाई का मुझे जब भी ख्याल आता है, अश्क रुखसार पर आंखों से निकल जाते हैं। तुझसे मिलने को कभी हम जो मचल जाते हैं, तो ख्यालों में बहुत दूर निकल जाते हैं।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब सुरभि को दीजिए अनुमति, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। मेघालय सरकार ने वर्नी हाट में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आधुनिक वायु शुद्धिकरण उपकरण लगाने का फैसला किया है। इस बारे में राज्य के मंत्री और जिरांग के विधायक सोस्थेनीज सोहतुन ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। और चलिए आगाज करते हैं कश्मीर की कली फिल्म के इस गाने के साथ। रफ़ी साहब और आशा भोसले की बेहद खूबसूरत आवाज़ों में सुनते हैं ये गीत।

तू भी पास हो तो दिल बेकरार अपना है, तू भी पास हो तो दिल बेकरार अपना है, कि हमको तेरा नहीं इंतजार अपना है। मिले कोई भी तेरा जिक्र छेड़ देते हैं, कि जैसे सारा जहां राजदार अपना है। तू पास भी हो तो दिल बेकरार अपना है, कि हमको तेरा नहीं इंतजार अपना है।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि उसमें मिलने वाला दर्द भी अपना सा लगने लगता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने की नहीं बल्कि उम्र भर महसूस करने की चाह होती है। जी हाँ, जब रात में खामोशी आ जाती है और ऐसे में दिल बस उसी एहसास को फिर से जीना चाहता है, उस एहसास को जिसने कभी मुस्कुराना सिखाया था और कभी तड़पना भी। शायद इसी मीठी तड़प का नाम इश्क है। तो चलिए सुनते हैं इस दर्द और इस मीठी कसक और तड़प को अपनी हसीन धुन में समेटे हुए इस दर्द की एक कहानी इस गीत के माध्यम से।

तुझ पर भी हो न गुमान मेरा, इतना भी कहा न मान मेरा। कुछ रोशनी शहर को मिली, तू जान है मेरी जहान मेरा। तुझ पर भी हो न गुमान मेरा, इतना भी कहा ना मान मेरा।

कोई चेहरा हुआ रोशन न उजागर आंखें, कोई चेहरा हुआ रोशन न उजागर आंखें, आईना देख रही थी मेरी पत्थर आंखें, ले उड़ी वक्त की आंधी जिन्हें अपने हमराह,

आज फिर ढूंढ रही हैं वही मंजर आंखें, कोई चेहरा हुआ रोशन न उजागर आंखें, आईना देख रही थी मेरी पत्थर आंखें।

और इस गीत के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। रात सुरमई में 2:10 पर होगी हमारी आपकी फिर से मुलाकात, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। अजरबैजान के बाकू में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता है। महिला वर्ग के 57 किलोग्राम फाइनल में उन्होंने अमेरिका की एपेनेसा एलिसन से 6-0 से हार का सामना करना पड़ा। महिला वर्ग के 49 किलोग्राम में कामना बाबल ने कांस्य पदक मुकाबले में रूस की इरिना तिसदेवा को 2-3 से हराया। वहीं 73 किलोग्राम वर्ग में गरिमा ने स्पेन की पाउला वेनाइक्सा पेरेस को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by

रात सुरमई प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं सुरभि, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और चलिए रात सुरमई का आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

रात सुरमई प्रोग्राम में चलिए अब आगे आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

इससे पहले कि बेवफा हो जाए, इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाए। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। बंदगी हमने छोड़ दी फराज, बंदगी हमने छोड़ दी फराज, क्या करे लोग जब खुदा हो जाए। इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाए।

जब तेरी याद के जुगनू चमके, जब तेरी याद के जुगनू चमके, देर तक आंख में आंसू चमके। शर्त है शिद्दते एहसास जमाल, रंग तो रंग है खुशबू चमके। यकीनन मोहब्बत अगर दिल से महसूस की जाए तो सिर्फ चेहरा ही नहीं, उसकी याद, उसकी खुशबू और उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा उम्र भर यूं ही याद रहता है, यादों में चमकता रहता है।

जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था, जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था, आते जाते हुए मौसम थे जमाना तू था। अब के कुछ दिल नहीं न माना कि पलट कर आते, और सब देख रहे थे कि निशाना तू था। जिंदगी यूं थी कि जीने का बहाना तू था, आते जाते हुए मौसम थे जमाना तू था।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए अनुमति, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार

0: लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल लोगों को उचित चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस नियमों के अंतर्गत असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में 388 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता है। लवप्रीत मात्र 1 किलोग्राम के अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। उन्होंने स्नैच में 176 किलोग्राम वजन उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम का वजन उठाया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed with the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त भारती और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आपका प्यार भरा स्वागत करती हूं मैं प्रोग्राम हमराही में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ।

सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, निभाए गए वादों से पहचाना जाता है। जब भरोसा साथ हो तो हर रिश्ता उम्र भर महकता रहता है।

दोस्ती में जब प्यार की मिठास खुल जाए तो हर मुलाकात यादगार बन जाती है। अपनेपन की यही खुशबू दिलों को हमेशा करीब रखती है।

जब मुलाकातों का मौसम आता है तो हर धड़कन एक नई गजल गुनगुनाने लगती है। प्यार की सबसे सुंदर यादें अक्सर इन्हीं हसीन लम्हों में जन्म लेती हैं।

जुदाई के कदम भले आगे बढ़ जाएं, लेकिन सच्ची मोहब्बत की आहट दिल में हमेशा गूंजती रहती है। यादों का सफर कभी नहीं थमता।

कभी एक छोटी सी मुलाकात भी ऐसी पहचान बन जाती है जो पूरी जिंदगी दिल के सबसे करीब रहती है। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से जाने जाते हैं।

कुछ रातें सिर्फ चांदनी की नहीं, यादों और एहसास की भी होती हैं। ऐसी रातें दिल के सबसे खूबसूरत ख्वाबों का संजो कर रखती हैं।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए, छोड़ के जा रहे हो एक बहुत ही प्यार से गीत के साथ। मुलाकात होगी 4:10 पर प्रोग्राम अरुणिमा में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न

0: राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून तथा परीक्षा माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए बेहद आवश्यक है।
1: देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे। गत दो दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
0: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लेक्तुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। भूटान ने देश के विकास में भारत के महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान की सराहना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई हिंसक कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बुनियादी अधिकारों को मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from filing of the charge sheet. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel and PMO Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." Mr. Singh also listed the government's efforts to prevent paper leaks and to reform the education system in the country. He said, "Youth are a huge investment for a Viksit Bharat." Earlier moving the bill in the House, Dr. Jitendra Singh said that this bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country. Later, the House was adjourned for the day to meet again at 11 a.m. today. The Parliament has also passed the Prevention

एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। प्रोग्राम है अरुणिमा। जी हाँ, स्वागत करती हूँ आप सबका। और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम अरुणिमा की इस प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म राजपूत से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म हमदम से महेंद्र कपूर और सुरेश वाडकर की आवाज में, संगीतकार घनश्याम, गीतकार राजेंद्र कृष्ण।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है अरुणिमा और आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म सूरत और सीरत से। लता मंगेशकर की आवाज़ में संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार शैलेंद्र।

0: अभी आपने गीत सुना फिल्म दूरियां से भुवेंद्र सिंह और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में, संगीतकार जयदेव, गीतकार सुदर्शन फाकिर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म अलग अलग से लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीतकार आरटी बर्मन, गीतकार आनंद बख्शी।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है,

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आपने गीत सुना फिल्म भैरवी से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में संगीतकार आनंद मिलन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म अनाड़ी से, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में। संगीतकार आनंद मिलन, गीतकार समीर। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। इससे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक

के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिखतू दोरजी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयले खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। पाकिस्तान के कोयला खदानों में हवा आने जाने का समुचित मार्ग न होने तथा निगरानी और सुरक्षा प्रणाली के अभाव के कारण अक्सर घातक दुर्घटनाएं होती रहती हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों पर की गई हिंसक कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए। कब्जे वाले क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर बुनियादी अधिकारियों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्रित महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूट स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

जिस तरह मन मंद हवा झूले की गति देती है, उसी तरह सकारात्मक सोच हमारे जीवन को नई दिशा देती है। हर नई सुबह विश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश लेकर आती है।

अपने दिल की सच्ची पुकार को सुनिए। सपनों की ओर बढ़ाया गया हर छोटा कदम एक दिन बड़ी मंजिल का रास्ता बन जाता है।

हवा कभी रुकती नहीं, वह निरंतर चलती रहती है। जीवन भी हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, कदम आगे बढ़ते रहने चाहिए।

पर रोग करत सब हा हा दैया, दाय उठाय लियो गिर नक पर बंस बजावत धेनु चलैया, जग के मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा।